0: का हार पुकारे, आजा आजा रे तुझको मेरा।
1: MBC रेडियो, योर म्यूजिक कंपेनियन।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रही है। समय हो चला है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है संध्या। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार। आज 13 सितंबर रविवार का दिन, इस पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है, सभी को मेरा प्रणाम। मॉरिशस में शादी का चलन घट रहा है। 2026 के पहले 6 महीनों में 3431 शादियां दर्ज की गई। बदलते समाज में लोग शादी को अब ज्यादा उम्र में और अपनी पसंद के मुताबिक करने लगे हैं। और 3 दिनों तक मॉरिशस बना दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोगों के मिलन का केंद्र, विचारों का आदान प्रदान, अपनी साझा विरासत और पहचान पर चर्चा, नई पीढ़ी की भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर मंथन। गुपियों के 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को एक साझा मंच पर जोड़ा है। अब ये सम्मेलन यादों, सम्मान और उपलब्धियों के साथ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज और इस सिलसिले में आज विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है कालबास में ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट की सांस्कृतिक केंद्र में। नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर व संगठित अपराध की कुछ जांचें पुलिस से लेकर इस नई एजेंसी को दी जा सकती है। विजन 2050 को अब अमल में लाने की तैयारी तेज हो गई है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए नई योजनाओं और संस्थानों की शुरुआत होगी। बिजली का बिल कम करने और घरों को अपनी सौर ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाने के लिए लील एनर्जी ने नया सोलर पैक लॉन्च किया है। इस योजना के तहत परिवारों को स्थापना की कुल लागत पर ₹75,000 तक की सरकारी सब्सिडी मिल सकती है। और गणेश चतुर्थी की तैयारियों के बीच अथर्वा समूह के सदस्य पारंपरिक जागरण नृत्य की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज के हमारे समाचार बुलेटिन में हम एक विशेष रिपोर्ट लेकर इस संदर्भ में आएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 44 लोगों के घायल होने की खबर मिली है, जिनमें एक की हालत गंभीर है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन फ्रांसीसी मीडिया में इसे साबोताज की संभावित घटना बताया जा रहा है। उधर यूक्रेन में रशियन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशिया के समारा इलाके में सैन्य सामान बनाने वाली एक कारखाने पर ड्रोन हमला किया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके के ऊपर हल्की हवाएं चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है। आज सुबह के समय धूप खिली रहेगी। दोपहर के समय उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल छाने की संभावना है तथा अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान तापमान, अधिकतम तापमान औसत से थोड़ा ऊपर, सेंट्रल प्लेटों पर तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटीय इलाकों में 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात के दौरान रात में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र की स्थिति सामान्य से कुछ उग्र रहेगी और दक्षिणी दिशा से करीब 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:03 पर।
2: Your weather forecast.
1: ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
0: नमस्कार।

0: सुप्रभात। इस समय सुबह के 6:04 हुए हैं और हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर। आप लोगों के जीवन में सुख और शांति हमेशा रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। और ये भी प्रार्थना है कि सुबह की ये शांति आपके जीवन में सुखमय शांति लेकर आए। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हुए हम आपको ले चलते हैं वैदिक वाणी कार्यक्रम की ओर। आर्य सभा मॉरिशस की ओर से ये कार्यक्रम सुनिएगा, सुनिएगा आचार्य रविशंकर जी को।
1: मधुर शहद सी हो आपकी वाणी, आइए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस की ओर से वैदिक वाणी।
2: ओम नमस्ते जी, मैं रविशंकर आर्य, वेदवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रभु ने हम मनुष्यों के लिए उन्नति के लिए वेदों का ज्ञान दिया और यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो तीसरा मंत्र है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। इस वेद के मंत्र का जो पद है, ये के चात्महनो जनाः, जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं, जो अपनी आत्मा को नष्ट करने वाले हैं, ये तो कमाल की बात हो गई। आत्मा को नष्ट कैसे किया जाता है? क्या आत्मा कभी नष्ट होती है? क्या आत्मा को मारा जा सकता है? क्या आत्मा जैसे अन्य वस्तुएं नष्ट होती हैं, क्या वैसे नष्ट हो जाती है? शास्त्रकार तो कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। आत्मा न तो जलती है, न गलती है, न नष्ट होती है, न सूखती है, उसमें तो किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ही नहीं होता। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं योग शास्त्र में कि वो कैसी है, शुद्धा च अनंता च, वो तो शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी भी प्रकार का उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी प्रकार से वो परिवर्तित नहीं होती है, परिणाम से रहित है। परिणाम तो प्रकृति के अंदर होंगे, चेंजेस तो प्रकृति के अंदर घटित होंगे, आत्मा के अंदर कौन सा चेंजेस घटित होगा? तो फिर वेद मंत्र में क्या कहा जा रहा है, ये के च आत्महनो जनाः, जो आत्मा का हनन करने वाले हैं। तो आत्मा के हनन करने से क्या मतलब निकलेगा, क्या तात्पर्य हमको इस वाक्य से निकालना है? अर्थात जो अपनी आत्मा के विरुद्ध चलते हैं, जो वास्तविक जो ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान के जो विरुद्ध चलने वाले हैं, वास्तविक ज्ञान के विरुद्ध चलना ही क्या है, अपनी आत्मा का हनन करना है, अपनी आत्मा को मारना है। सत्य के विरुद्ध हो करके बोलना, पता है मेरे को कि इसने ऐसा नहीं किया था, मेरे मन में तो पता है, मेरी आत्मा में तो ऐसा ही ज्ञान है कि इसने ऐसा नहीं कहा था, इसने ऐसा नहीं किया था, और किसी भी दबाव से, किसी भी भय से, किसी भी और परिस्थिति से, लोभ से, मैं उस तरह का बोल देता हूं, हाँ अरे नहीं इसने तो किया था, मैंने देखा है इसको। तो ये क्या है, ज्ञान मेरे अंदर कुछ और है और मैं बोल कुछ और रहा हूं, ज्ञान मेरे अंदर कुछ और है और मैं कर कुछ और रहा हूं, सामने वाले ने गलत किया है, मुझे बोलना चाहिए कि इसने गलत किया है, हाँ इसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं वो सामने वाला बड़ा ताकतवर है, मुझे डर लग रहा है कि ये मेरी कोई हानि कर देगा, तो मैं भय के कारण से उस सत्य को उजागर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता है इसने गलत किया है, लेकिन मैं बोल देता हूँ नहीं जी इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो उस समय मेरे पास में था, मेरे साथ में बैठा हुआ था, ये देखिए होटल्स के बिल हैं। ये क्या है, ये आत्मा का हनन है। आत्मा में ज्ञान कुछ और है, मन में ज्ञान कुछ और है, वाणी में वचन कुछ और है, और कर्मों में कुछ और ही है। तो अंदर कुछ और बाहर कुछ और, समाज में भी ये कहावत प्रचलित है, ये तो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, अंदर तो कुछ और ही है, बाहर दिखावा कुछ और ही है। तो ये जो दिखावटी चेहरा है, ये जो नकली चेहरा है, ये जो एक वेश बना रखा है, ये क्या है, यही यहां पर कहा जा रहा है वेद के मंत्र में। ये लोग क्या हैं, ये आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, अपनी आत्मा

को नष्ट करने वाले लोग हैं, अपनी आत्मा को पतित करने वाले लोग हैं, जिस पायदान पर खड़े हुए हैं उस पायदान से नीचे लाने वाले ये कर्म हैं। तो फिर क्या होगा ऐसे लोगों का? आप तो कहेंगे कि बड़े मौज में हैं ये लोग, बड़े आनंद में हैं, जो जितना झूठ साज करे, मिलावट करे, इधर उधर करे, वो उतना ही ज़्यादा सफल, उसकी उतनी ज़्यादा तरक्की, और जो सच का पल्लू जिसने पकड़ा हुआ है उसको तो सारी दुनिया सताती है, यही प्रचलन में है। तो वेद क्या कह रहा है यहाँ पर, और वेद का उपदेश किस लिए है? अगर जो शक के ही ना हो तो वहाँ पर शास्त्रों के उपदेश काम नहीं करते, जो हो सकता है वहीं शास्त्रों के उपदेश काम करते हैं, जो संभव है तभी उसका उपदेश दिया जाता है, जो असंभव है उसका उपदेश शास्त्र नहीं कर सकते। अगर ये घटित ना हो सकता हो, ये हो नहीं सकता हो, तो शास्त्र नहीं कहेगा उसके लिए, वेद नहीं कहेगा उसके लिए, वो हो सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो अपनी आत्मा का पतन करने वाले हैं, अपनी आत्मा को गिराने वाले हैं, अपने जीवन स्तर को नीचे ले जाने वाले, उनके लिए क्या गति होगी? तो कहा असूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसावृता। तो अंधकार युक्त जो स्थितियां हैं, अंधकार युक्त जो जीवन है, एक समय ऐसा है कि हम पूर्णिमा का आनंद ले रहे हैं, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, और एक स्थिति वो है कि जब अमावस्या है, अंधकार ही अंधकार है। तो जैसे बाहर प्रकाश और अंधकार की स्थिति है, वैसे ही हमारे जीवन में भी प्रकाश और अंधकार की स्थिति सतत चलती रहती है। और यहां पर कहा जा रहा है ऐसे जो लोग हैं जो निरंतर रूप से इसी तरह से लगे हुए रहते हैं, उनके जीवन में अंधकार बना ही रहता है, अंधकार से युक्त जीवन उनका बना रहता है। अंधेन तमसावृता, तमस से आवृत, अंधकार से आवृत। तो ऐसे कौन से लोग हैं? उनको ऐसे शरीर प्राप्त होंगे जिसमें ज्ञान की कोई किरण ही प्राप्त ना होगी, ज्ञान की कोई लौ ही जिनको प्राप्त ना हो सके, ऐसी स्थितियां उनको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे शरीर प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे परिवार प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी कॉलोनी में उनका जन्म होगा, ऐसे देश में उनका जन्म होगा, ऐसे स्थान में उनका जन्म होगा। तो ऐसी जगह, ऐसे स्थान, ऐसे शरीर, ऐसे परिवार जहाँ पर उनके जीवन के लिए उन्नति की कोई संभावना ही नहीं है। और यदि ये कहें कि उनको दूसरे शरीर प्राप्त होंगे, पशुओं के शरीर प्राप्त होंगे, पक्षियों के शरीर प्राप्त होंगे, कीट पतंग स्थावर योनियाँ, वृक्ष वनस्पति तिर्यक योनियाँ और नारकीय स्थितियाँ, कहाँ हैं उनमें ज्ञान की स्थितियाँ, कहाँ हैं उनमें प्रकाश? तो ये जो लोग हैं जो इस तरह से अपनी आत्मा को गिराते हैं, वो इस प्रकार से तमस से युक्त, अंधकार से युक्त शरीरों को, स्थितियों को, लोकों को प्राप्त होते हैं। तो फिर प्राप्त हो गए तो क्या होगा? ठीक है, बन गए, बन गए, क्या हुआ? आप देखिए, जब हमारे जीवन में आलस्य बहुत ज़्यादा हो, मैं अब मनुष्य जीवन का उदाहरण देते हुए बात कर रहा हूँ, मनुष्य शरीर हमारा है, हम सब ठीक है अपने जीवनचर्या में, अपनी दिनचर्या में हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, जिसका जो काम है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि तमोगुण बहुत हावी रहता है, तमोगुण बहुत प्रबल रहता है। जैसे रात्रि को निद्रा के समय में तमोगुण की अधिकता रहती है, रात्रि के समय में क्या है, रात्रि के समय में जब हम सोते हैं तो तमोगुण की अधिकता से हमको निद्रा आती है। तो रात्रि में तमोगुण की अधिकता से निद्रा आती है, ये तो स्वाभाविक स्थिति है, ऐसा तो होगा। लेकिन यदि दिन के समय में तमोगुण की अधिकता हो और दिन के समय में तमोगुण की अधिकता के कारण से बुद्धि में निष्क्रियता आ जाए, आलस्य भरा रहे, तंद्रा रहे, हमको जो कार्य करने हैं हम उन कार्यों को ना कर पाएं, दिन भर ऊँगते रहें, दिन भर उवासियां लेते रहें, तंद्रा में रहें, अर्धचेतना में रहें, कोई विषय पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हमें अपना काम करना है, हमें उधर दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्या है? ये स्थिति तमोगुण से युक्त स्थिति हमारे जीवन की है। विषयों की ओर अत्यधिक प्रवृत्ति का होना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, विषयों की तरफ अत्यंत आसक्ति का रहना, मूढ़ स्थिति का बने रहना, आलस्य का बने रहना, अज्ञान का बने रहना, अधर्म का बने रहना, मनु महाराज कहते हैं ये सब क्या है? ये सब तमोगुणीय स्थितियां हैं।
जब व्यक्ति मूढ़ स्थिति में रहता है तो क्या होता है? अधर्म, अज्ञान,

0: अवैराग्य है, ये लक्षण दिए व्यास जी ने। अधर्म के कार्यों को करेगा और उसको लगेगा यार मैं ठीक कर रहा हूँ, बढ़िया तो कर रहा हूँ मैं, करेगा गलत और उसी को ही ये सिद्ध करने का प्रयास करेगा तो मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। बहुत मोह की स्थिति में है, अविद्या की स्थिति में है, चिंतन उसका बिगड़ा हुआ है, हर तरीके से निम्न स्थिति में है, लेकिन उस अविद्या के कारण से ऐसा ही मान करके चलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ, ठीक बोल रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। ये सारी स्थितियाँ क्या हैं? ये सारी स्थितियाँ तमोगुणी स्थितियाँ हैं और कर्मों के कारण से हम इन तमोगुणी स्थितियों में कभी ना कभी आ जाते हैं, रहते हैं। हम अपने आप को भी देख सकते हैं, अन्यों को भी देख सकते हैं, आसपास में अन्य जो जीव हैं हम उनको भी देख सकते हैं। तो हम अपने वर्तमान जीवन में तो तमोगुण की स्थिति में जाते ही हैं, लेकिन उसके बाद में मरने के बाद में तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, प्रेत्य मरने के बाद में ऐसे शरीरों को प्राप्त होते हैं, ऐसी नारकीय स्थितियों को प्राप्त होते हैं और वहाँ पर जाकर के क्या होगा, वो कैसी अवस्था है? वो अवस्था है दुख की, वो अवस्था है अभाव की, वो अवस्था है ऐसी निकृष्ट स्थिति की। और वहाँ पर जा कर के जो आत्मा है वो आत्मा अपने कर्मों के फलों को वहाँ पर जा कर के भोगता है। इसलिए व्यक्ति को ये चाहिए, ये सारा कहने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हम इस प्रकार से कर्मों को ना करें, हमारे अंदर कुछ और बाहर कुछ, जिससे कि हम ऐसी निंदनीय स्थिति में जाने से बच सकें। असूरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनोजनः। इत्योंशम ओम।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा वैदिक वाणी,
2: और आज हम सुन रहे थे आचार्य रविशंकर जी को।

इस समय सुबह के 6:17 हुए हैं। अभी थोड़ी देर में लगभग 6:20 पर सुनिएगा आज का एक विशेष कार्यक्रम गणेश चतुर्थी के महाउपलक्ष में प्रस्तुत करता होंगे नितिन बाबू। लेकिन इससे पहले चलिए ज़रा हम खुशियों और गमों पर गौर करते हैं। मिलती हैं खुशियाँ, मिलते हैं गम हमको, और इन्हीं खुशियों इन्हीं गमों के बीच में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और यही है सच्चाई ज़िंदगी की कि खुशियाँ भी मिले गम भी मिले, दोनों को आप संजो कर रखिए। गम को आप भुलाने की कोशिश कीजिए या गमों को खुशियों में ढालने की कोशिश कीजिए, पर इन गमों से जूझने के लिए हिम्मत ज़रूर बटोरिए।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश.

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाती चलिए, सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं।

रविवार 13 सितंबर 2026 की इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मॉरिशस में शादी का चलन घट रहा है। 2026 के पहले 6 महीनों में 3,431 शादियां दर्ज की गई। बदलते समाज में लोग शादी को अब ज्यादा उम्र में और अपनी पसंद के मुताबिक करने लगी हैं। साझी विरासत, साझा पहचान और अब यादों का एक भावुक पल। मॉरिशस में आयोजित गोपियों के 16वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम दिन दिवंगत धनदेव बहादुर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद सम्मेलन का समापन और पुरस्कार समारोह होगा। नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर व संगठित अपराध की कुछ जांचें पुलिस से लेकर इस नई एजेंसी को दी जा सकती हैं। विजन 2050 को अब अमल में लाने की तैयारी तेज हो गई है। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए नई योजनाओं और संस्थाओं की शुरुआत होगी। बिजली का बिल कम करने और घरों को अपनी सौर ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाने के लिए लील एनर्जी ने नया सोलर पैक लॉन्च किया है। इस योजना के तहत परिवारों को स्थापना की कुल लागत पर ₹75,000 तक की सरकारी सब्सिडी मिल सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन की पटरी से उतरने के बाद कम से कम 44 लोग घायल हो गई हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। वहीं यूक्रेन में रशियन हमलों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। क्या मॉरिशस के लोगों में शादी का आकर्षण अब भी पहले जैसा है? 2026 के पहले 6 महीनों में मॉरिशस गणराज्य में 3,431 शादियां दर्ज की गईं। ये संख्या पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 2.4% कम है। शादियों में कमी का ये सिलसिला कुछ सालों से जारी है। 2023 में 8,654, 2024 में 8,220 और 2025 में 7,715 शादियां दर्ज की गई थी। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुमान के मुताबिक इस साल करीब 7,490 शादियां हो सकती हैं। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे समाज में आ रहा एक बदलाव भी दिखाई देता है। लोग अब शादी देश से कर रहे हैं और ये फैसला पहले से ज्यादा व्यक्तिगत पसंद पर आधारित लगता है और शादी का आर्थिक पहलू, इस पर ज्यादा जानकारी शैली नेबर ने समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और कई युवाओं से इस बारे में बातचीत के दौरान ज्यादा जानकारी प्राप्त की है। सुनते हैं। 2024 में पहली शादी की औसत उम्र महिलाओं में 29 वर्ष 1 महीना और पुरुषों में 32 साल 2 महीना पहुंच गई। 10 साल पहले ये उम्र क्रमशः 27 वर्ष 9 महीना और 31 वर्ष 6 साल की थी। राज्य शास्त्री चंद्रसेन रंगासामी के मुताबिक इस बदलाव की एक बड़ी वजह महिलाओं की बढ़ती आत्मनिर्भरता है। ज्यादा शिक्षा, रोजगार के बढ़ते अवसर और अपनी जिंदगी में शादी का फैसला खुद लेने की आजादी ने इस सोच को बदला है। अर्थशास्त्री मनीषा धुकोनी इसके साथ आर्थिक पहलू को भी जोड़ती है। घर खरीदना, बच्चे की परवरिश और शादी का खर्च, ये सभी बड़े खर्च हैं। देश में महंगाई की सालाना दर अगस्त में 4.9% रही। वहीं बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार जून 2025 से जून

0: 26 के बीच घरेलू कर्ज में 11.2% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि इन आंकड़ों के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता है कि शादी में कमी की वजह सिर्फ आर्थिक स्थिति है। दरअसल ये बदलती प्राथमिकताओं की तस्वीर है। पहले अपना घर, परिवार और करियर बनाना, आत्मनिर्भर होना और उसके बाद शादी का फैसला करना। शादी खत्म नहीं हो रही है, बस अब थोड़ी देर से हो रही है और ये फैसला अब सिर्फ परिवार या समाज की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी पसंद और तैयारी के मुताबिक लिया जा रहा है। 3 दिनों तक मॉरिशस बना दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोगों के मिलन का केंद्र। 2 सदियां पहले भारत से निकले आजाद जहाज अपने साथ अपने सपने, जहां 2 सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ सपने, उम्मीदें और एक समृद्ध विरासत लेकर रवाना हुए थे। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मॉरिशस में एकजुट हुई, जहां 16वें गोपियो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, युवा पीढ़ी, कारोबार, रोजगार के अवसर, संस्कृति और भारतीय भाषाओं की विरासत को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रवासन यानी इमिग्रेशन की भूमिका और अलग अलग समुदायों के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया। आज सम्मेलन के अंतिम दिन दिवंगत धनदेव बहादुर को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में 1:00 PM समापन और पुरस्कार समारोह आयोजित होगा। नई नेशनल क्राइम एजेंसी के गठन की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। बजट 2026-2027 में इस एजेंसी की स्थापना के लिए पहले ही 200 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया था। मंत्रिपरिषद ने कल 9 विधेयकों को पेश करने की मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों के जरिए नई एजेंसी का गठन किया जाएगा और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC के मौजूदा कानूनी ढांचे को समाप्त किया जाएगा, लेकिन FCC की जगह NCA का आना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर है कि नई एजेंसी को कितने अधिकार दिए जाएंगे। NCA को फाइनेंशियल क्राइम, साइबर क्राइम और गंभीर जटिल तथा संगठित अपराध से जुड़ी कुछ जांचें पुलिस से अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल सकता है। ये 9 विधेयक अब नेशनल असेंबली में प्रकाशित कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी शैलिनी अबन की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा दे रही है।
1: मॉरिशस की ओर से कई प्रस्ताव किए गए जिन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गौर कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक फैक्ट चेक के लिए फतेफ मात्र 24 घंटे की मोहलत देता है और 24 घंटों में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अफ्रीका अन्य फतेफ देशों जैसा नहीं है। मैंने इस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के अध्यक्ष वांदा के वित्त मंत्री ने ये 9 विधेयक मौजूदा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की तुलना में कई अधिक व्यापक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रस्तावित नई एजेंसी के प्रमुख कार्यों में उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अपराधों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसंस्करण और मूल्यांकन करना, साथ ही आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त संपत्तियों को बरामद करना और उनका प्रबंधन करना शामिल होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि एजेंसी पुलिस द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप कर सकेगी और यदि मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो जांच की जिम्मेदारी अपने हाथ में भी ले सकेगी। इस व्यवस्था में जांचकर्ताओं और अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करने वाले लोगों के लिए एक विशेष कानून का प्रावधान है। इसके अलावा अज्ञात या अस्पष्ट संपत्तियों से संबंधित एक अलग कानून भी प्रस्तावित है। अब आगे की प्रक्रिया संसद के हाथों में है। इन 9 विधेयकों को नेशनल असेंबली द्वारा प्रसारित और प्रकाशित किया जा चुका है। हालांकि राष्ट्रसभा फिलहाल स्थगित है और इसकी अगली बैठक 20 अक्टूबर तक नहीं होगी। ये सुधार ऐसे समय में सामने आया है जब फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मंगलवार को बताया कि लगभग 55 बिलियन मॉरिशन रुपए से जुड़ी संपत्तियों और मामलों की फिलहाल जांच चल रही है।
0: विजन 2050 के शुरू किए जाने के करीब 9 महीने बाद अब इसे अमल में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये राष्ट्रीय रणनीति

0: की मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2035 के जरिए लागू किया जाएगा। इसके अमल पर नजर रखने के लिए नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल बनाया जाएगा। इसके अलावा 2027 से 2030 की अवधि के लिए 10-point इम्प्लीमेंटेशन प्लान लागू किया जाएगा। साथ ही नेशनल डिलीवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट भी बनाई जाएगी। इसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है, साथ ही दूसरे संबंधित पक्षों के साथ भी समन्वय मजबूत करना है। फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मंत्री ज्योति जितन ने कहा कि इस दिशा में काम आज से ही शुरू हो रहा है। उन्होंने विजन 2050 के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को 2050 तक $50 बिलियन तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को 4.7% आर्थिक विकास दर दर्ज करनी होगी, जबकि फिलहाल ये करीब 3% है। मंत्री ज्योति जितन को सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला सीतामणि ने।
1: मॉरिशस की ओर से कई प्रस्ताव किए गए जिन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गौर कर रहा है। उदाहरण के तौर पर एक फैक्ट चेक के लिए फटेफ मात्र 24 घंटे की मोहलत देता है और 24 घंटों में ये नहीं हो पाएगा क्योंकि अफ्रीका अन्य फटेफ देशों जैसा नहीं है। मैंने इस अवधि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। काउंसिल के अध्यक्ष वांडा के वित्त मंत्री ने इसका समर्थन किया, साथ में सेशल्स ने भी। मैंने इसे 72 घंटों तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हमारी आवाज़ ज़रूरी है क्योंकि इसी मेज पर ज़रूरी निर्णय लिए जाते हैं जो इस अमला के सभी देशों को प्रभावित करते हैं।
0: बिजली का बिल कम करने और उपभोक्ताओं को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लील एनर्जी ने इस सप्ताह अपना नया गुड वी ऑल इन वन फोटोवोल्टाइक पैक लॉन्च किया है। लील एनर्जी के मैनेजर लोइक सुरे के अनुसार ये पहल मॉरिशस के परिवारों को अपनी सौर ऊर्जा खुद बनाने और उसे स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग उपकरण एक ही तकनीकी प्रणाली के तहत काम करने के लिए तैयार किए गए हैं। परिवारों को सरकार की ओर से 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो स्थापना की कुल लागत पर अधिकतम ₹75,000 तक है। ये सहायता हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम के तहत दी जा रही है, जिसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस करता है। लोइक सुरे को सुनते हैं, एक बार फिर राजमिला सीतामणि ने उनसे बात की। विवरण याचना मिश्रा का है।
1: हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है देश में सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच तक लाना। डीबीएम के ग्रांट के सहारे हम ये कर पा रहे हैं, जिसके तहत परियोजना की 25% फाइनेंसिंग यानी ₹75,000 तक की मदद दी जाती है। इस कदम का ऐलान हाल में मंत्री पत्रिका सेवादन ने किया और ये अमल में लाया जा रहा है। हमसे कोटेशन लेकर सीबी में अर्जी डालें और डीबीएम में एप्लीकेशन करें। ग्राहक को एक वाउचर मिलेगा जो उसे हमें लाकर देना पड़ेगा ताकि हम इंस्टॉलेशन कर पाएं।
2: डीबीएम et il nous remet le voucher original pour que nous puissions faire l'installation.
0: इसके अलावा रिजवी में स्थित एंटोमोलॉजी डिवीजन में एक नया एक्सरे इराडिएटर काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल फलों की मक्खियों के नर कीटों को प्रकृति में छोड़ने से पहले निष्क्रिय करने के लिए किया जाएगा। ये प्रक्रिया स्टेरिल इंसेक्ट टेक्निक के तहत की जाएगी। ये नई टेक्निक फलों की मक्खियों जैसे कीटों से निपटने के इस तरीके को और मजबूत करेगी और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कम करने में भी मदद करेगी। एग्रो इंडस्ट्री मिनिस्टर यानी कि कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल चाहते हैं कि मॉरिशस इस टेक्निक के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक उदाहरण बने। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल को सुनते हैं।
3: L'agriculture avec technologie avancée pour combattre un fléau Mais en même temps aussi, nous tous, besoin respectueux des normes phytosanitaires.

0: गणेश चतुर्थी के उत्सव की तैयारियों के बीच अथर्व समूह के सदस्यों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले कई हफ्तों से वे पूरे जोश और लगन के साथ जाकरी जो है यानी कि मराठी समुदाय के पारंपरिक नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। गीतों की धुन और नृत्य के कदमों के साथ वे अपने बुजुर्गों से मिली इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और गणेश चतुर्थी को श्रद्धा उत्साह और खुशी के साथ मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उर्वशी भिकारी भंजन की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: हर एक नृत्य की अपनी एक कहानी होती है, एक समुदाय की, उसके काम की और उसकी मान्यताओं की कहानी। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक नृत्यों में कोली नृत्य का एक विशेष स्थान है। ये नृत्य मुख्य रूप से कोली मछुआरा समुदाय से जुड़ा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। इसके हाव भाव समुद्र में मछुआरों के जीवन को दर्शाते हैं। लहरों की गति, मछुआरों का काम और उनकी नावों की गतिविधियों को इन नृत्य मुद्राओं के माध्यम से दिखाया जाता है। मछुआरे इन मूवमेंट्स के माध्यम से सुरक्षा की मांग करते हैं। एक अन्य परंपरा, एक अलग दुनिया, किसानों की दुनिया। महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य कृषि उत्सवों और अच्छी फसल के लिए की जाने वाली प्रार्थनाओं से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में जब नाचते हैं तो ज्यादातर हाथों का प्रयोग किया जाता है और किसान प्रार्थना करते हैं कि फसल अच्छी हो। लेकिन ये अलग अलग परंपराएं एक दूसरे से अलग नहीं हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महाराष्ट्र के विभिन्न लोक नृत्यों के ताल और नृत्य हाव भाव एक ही प्रस्तुति में देखने को मिलते हैं।
2: डांस की एसोसिएशन अवेक गणेश चतुर्थी से झाकरी।
1: गणेश चतुर्थी की बात जब करते हैं तो झाकरी की बात होती है। झाकरी भी एक फोक डांस है। समय के साथ झाकरी में बदलाव लाए गए, इसकी प्रस्तुति में विशेषकर। मराठी समुदाय के प्रतिनिधि झाकरी को यूनेस्को के सामने ले जाना चाहते हैं, एक इनटेंजिबल हेरिटेज के स्तर पर। ये नृत्य सिर्फ अलग अलग कदमों का मेल नहीं है, ये मराठी संस्कृति, इसके इतिहास और उसकी पहचान की अभिव्यक्ति है।
0: अभी आप नीतूषा जीहा की रिपोर्ट सुन रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे आपको बता रही थी कि उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम 44 लोग घायल हो गए हैं। इनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायलों में एक 18 वर्षीय महिला भी शामिल है, जिसे गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। और साथ ही ये भी बताया गया है कि फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार कि इसे एक साबुतेज की संभावित घटना के रूप में भी देखा जा रहा है। अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर हताहतों से निपटने की आपातकाल योजना सक्रिय कर दी है। और उधर यूक्रेन में रूस के द्वारा हमलों के दौरान कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस बीच यूक्रेनियन डिफेंस फोर्सेज ने बताया है कि रात के समय रशिया के समारा इलाके में स्थित टोलियाटिकोचोक सिंथेटिक रबर प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया। इस फैक्ट्री रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सामान की आपूर्ति करती है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब यूक्रेन और रशिया के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके के ऊपर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह के समय धूप खिली रहेगी, दोपहर बाद में उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ देर के लिए बादल छाने।

की संभावना है। अन्य इलाकों में मौसम सुहाना रहेगा। रात में कुछ जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के पास समुद्र की स्थिति सामान्य से कुछ उग्र रहेगी और दक्षिणी दिशा से करीब 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर औसत से थोड़ा ऊपर रहेगा यानी 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटीय इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:03 पर।

0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसल पर हमारे सहयोगी फैजान का सहयोग मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। मेजर लेन लापी पितोमे, मेजर लेन लापी पितोमे 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री कमल नारायण हरेल जिन्हें कमल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज उनकी बेटी संध्या हरेल के घर लापे पितों से उठाकर पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। समय के बारे में बाद में बताया जाएगा। क्रीमेशन टुडे आफ्टरवर्ड्स। बेलरोज क्लेमेंशिया में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बसंती लखन जिन्हें ललिता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके बेटे शिव प्रसाद लखन के घर क्लेमेंशिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भूषाओं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुडे 2:30 PM। मौगुयाव कौंदे मास्क पावी में 42 साल की 42 ईयर्स ओल्ड की कुमारी कीर्ति दानू जिन्हें मीनू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनकी माँ माया दानू के घर मौगया कौंडेमास पावी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडेमास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे 11 AM। जापानी रो थ्रियोली में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री जयकरण दुयाल जिन्हें सुनन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे राजा अदयाल के घर थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए जैसस्त लेन थ्रियोले की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे 2 PM। रामचंद्र रोड रिश्मो सेंट्रो दे फ्लाक में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के श्री गोइनसामी चिलेम्बेन जिन्हें तांगावेल के नाम से बहुत ज्यादा जानते थे और जो पहले कोंस्टांस शुगर स्टेट में ड्राइवर का काम करती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर रिश्मो सेंट्रल फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे 12:30 PM। सागर लेन कोंकावाल क्यूपिप में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री जितेंद्र गोपी जिन्हें गोपी कॉफे के नाम से भी ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर कोंकावाल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा के शमशान भूमि ले जाएगी। क्रीमेशन टुडे 2 PM। लोई स्ट्रीट रॉयल रोड ल्योशे तेरोज में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती प्रविता कायतू पैदाश नाम जग्गू और जिन्हें फी के नाम से ज्यादा जानती थी कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर ल्योशे तेरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वालिदेपद की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे 11 AM। रोजलिन लेन कासी में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री मनाजी आबाजी जिन्हें दादू कैकारी आपला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके घर रोजलिन लेन कासी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन पोर्टलुइस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रीमेशन टुडे 11 AM। अटलास रोड गुडलैंड्स में अटलास रोड

एंस में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीप लखवा, श्री जगदीप लखवा जिन्हें देवानंद के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती निशा लखवा के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागुची की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 3 PM। पाई रोड पाई में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्रनाथ अकू जिन्हें गौसों के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहली दागुचे के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे उनके पहनोई विनय गणपत के घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे एट 9 AM। रॉय रोड कासी में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती माधवी लाचा की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी माँ कुशीला लाचा के घर काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसालिन पोर्टलिस की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 10 AM। रॉय रोड रूद बुआशेरी मुकामें 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भामा रामचंद जिन्हें फी के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10:30 बजे उनके भाई अशोक रामचंद के घर मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोसौ सैपिया की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 10:30 AM। बुआशेरी रोड मुकामें 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेमदत्त गुलाम जिन्हें बालू के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती अनीता गुलाम के घर मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकों सौसैपिया की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 2:30 PM। कैथोबो रोड मोनाको में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री चित्रंजन माधो जिन्हें राजू मौसाहोची के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर मोनाको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांशा की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टुडे 11 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में विनोबा भवन शाखा नंबर 4 रविवार 13 सितंबर को सुबह 8:30 बजे सियाकोंस्टांस सैंपिया के विनोबा भवन में यज्ञ और सत्संग का आयोजन कर रहा है। रविवार 13 सितंबर को सुबह 8:30 बजे हाईलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर नाडेस रोड हाईलैंड्स फिनिक्स द्वारा यज्ञ का आयोजन कर रहा है। सोमवार 14 से 20 सितंबर को गणेश चतुर्थी के संदर्भ में ग्लेनपॉक वाक्वा के मराठी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर द्वारा प्रेमोत्सव चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में मेलरोज के श्री गजानन सरस्वती मंदिर मोका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मॉरिशस मराठी मंदाली फेडरेशन के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को 6:00 बजे गणेश मूर्ति स्थापना, रात के 8:30 बजे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 5:00 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में पाल्मा कैथोबोन के देवानंद और अविनाश गनक परिवार द्वारा मंगलवार 15 सितंबर से 20 सितंबर तक गौरी पूजा का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में बोबासा स्वस्तिका कमेटी द्वारा सोमवार 14 सितंबर को शाम 3:30 बजे कलश स्थापना और मंगलवार को 15 सितंबर को 11:30 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में

0: सोमवार 14 सितंबर को रात्रि के 7:30 बजे गणेश पूजा और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 3 बजे सैमोत्या सुरफेरिनो में विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में कौ गाबो के सनातन और कौ गाबो काली माता मंदिर के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को शाम 4 बजे मूर्ति स्थापन और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 4 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है।
1: सुबह के 7:01 और 15 सेकंड हुए हैं।

सुनने वाले को विकास रणधी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। आज रविवार है, आर्सेनल का परफेक्ट स्टार्ट जारी है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जबकि लिवरपूल की गाड़ी अभी भी हौले हौले जा रही है और आज रात की मैनचेस्टर डर्बी क्या रंग लाएगी, देखते रहिए और सुनते रहिए। इंग्लिश प्रीमियर लीग का चौथा सप्ताह डिफेंडिंग चैंपियन आर्सेनल के लिए विजयी साबित हुआ, यानी सन्डरलैंड 0 आर्सेनल 2। ये कल रात का आखिरी मुकाबला था, कल रात 11 बजे मैच शुरू हुआ। उसके बाद सन्डरलैंड को मिला एक पेनाल्टी जिसे वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। उसके तुरंत बाद ब्रूनो गिमारेज ने 58वें मिनट पर आर्सेनल को आगे किया और बाद में बुकायो साका ने इंजरी टाइम में जाकर दूसरा गोल स्कोर करके आर्सेनल को 2-0 से जितवा दिया। फिर भी कोच मिकेल आर्टेटा खुश नहीं है। ये मैच कभी भी इसमें उलटफेर हो सकता था। एक पहली पेनाल्टी मिस की, फिर बाद में जाकर इंजरी टाइम में ही जाकर दूसरा गोल स्कोर कर पाया बुकायो साका। फिर भी आर्सेनल जीत गया, 4 मैचों में 4 विजयी, उसकी यात्रा जारी है। सन्डरलैंड 0 आर्सेनल 2। बाकी मैचों में लिवरपूल को लगा फिर से झटका यूरोपियन चैंपियंस लीग में जीत हासिल करने के बाद। कल उसकी गाड़ी की इंजन ही खराब हो गई, एक भी गोल बना नहीं पाया लिवरपूल अपने एनफील्ड में। लिवरपूल 0 फुलहम 0। अल्वारो अबेलोआ की वापसी उसकी वापसी सफल साबित हुई एनफील्ड में, जहां पर उसने कम से कम 100 मैच खेले हैं लिवरपूल के साथ। अब कोच के रूप में उसने लिवरपूल को परेशान किया। लिवरपूल 0 फुलहम 0। टोटेनहम हॉटस्पर और एवर्टन ने भी मैच ड्रॉ किया 0-0। द स्पर्स के लिए बात नहीं बन पा रही है, हार और ड्रॉ केवल हाथ लग रहे हैं। टोटेनहम हॉटस्पर 0 एवर्टन 0। क्रिस्टल पैलेस 2 इप्सविच टाउन 3 एवे जाकर इप्सविच की जीत हुई। चेल्सी और हल सिटी ने भी मैच ड्रॉ किया 2-2। एक समय हल सिटी चेल्सी के स्टैमफोर्ड ब्रिज में 2-1 से आगे थी। पहला गोल मोगन रोजर्स ने स्कोर किया चेल्सी के लिए, फिर बेलूमी का एक डबल 28वें और 34वें मिनट पर। फर्स्ट हाफ में हल सिटी 2-1 से आगे, सेकंड हाफ में जाकर रोआओ पेड्रो ने फिर चेल्सी के लिए इक्वलाइज किया और तब जाकर ये मैच ड्रॉ पर संपन्न हुआ। चेल्सी 2 हल सिटी 2, बोर्नमुथ भी 2, ब्रेंटफोर्ड 2 और एस्टन विला की हार हुई विला पार्क में। एस्टन विला 1 नॉटिंगहम फॉरेस्ट 2 अलिसन इधर से, रोली डेलाप और इगो रेजुस उधर से। एस्टन विला 1 नॉटिंगहम फॉरेस्ट 2। आज रात 2 महत्वपूर्ण मुकाबले, सबसे पहले शाम 5 बजे कोवेंट्री सिटी वर्सेस ब्राइटन और रात 7:30 बजे द मैनचेस्टर डर्बी ओल्ड ट्राफोर्ड में, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लाल भूत खेलेंगे मैनचेस्टर सिटी के स्काई ब्लूज के विरुद्ध। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, ये मैच आज रात 7:30 बजे खेला जाएगा ओल्ड ट्राफोर्ड में। और बता दें कि ये इस मैच को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, और जहां तक मैनचेस्टर यूनाइटेड का सवाल है तो वो अक्सर सिटी के लिए काफ़ी रुकावटें पैदा करती हैं और आज ये मैच ओल्ड ट्राफोर्ड में खेला जाएगा तो सपना देखना मना नहीं है। फिर भी सपना पूरा करने की ताकत भी रखनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड।

वर्सेस मैनचेस्टर सिटी आज रात 7:30 ओल्ड ट्राफोर्ड में। बढ़ते हैं बाकी चैंपियनशिप की ओर, खासतौर पे स्पेन के लालीगा में कल रियल मैड्रिड की जीत हुई। फिर से एक गत सप्ताह मैच हारने के बाद कल फिर उसकी जीत हुई। कल जूड बेलिंगम ने भी एक गोल स्कोर किया और किलियन एम्बापे का भी गोल रहा स्पेन के लालीगा में। और आज भी कई अन्य मैच खेले जाएंगे। सो स्पेन के लालीगा में रियल मैड्रिड 4 रेयो वालेकानो 1, किलियन एम्बापे का एक डबल, 14वें मिनट पर एक पेनाल्टी, फिर इंजरी टाइम में दूसरा गोल, अल्वारो कारेरास और जूड बेलिंगम आल्सो ऑन टारगेट। रियल मैड्रिड 4 रेयो वालेकानो 1, जबकि एथलेटिक और एल्चे ने मैच ड्रॉ किया 1-1। ओसासुना 0 स्पानियल 2, सांतांडेर 2 अलावेस 1। जर्मनी के बुंडेसलीगा में ऑक्सबर्ग और बायर 0-4 के बीच मैच ड्रॉ गया 2-2। बोरुशा डॉर्टमुंड 3 पादेबोन 0, फाबियो सिल्वा एंड मेचा का एक डबल। फ्रीबर्ग ने बोरुशा मोंचेनग्लादबाख को 5-0 से पछाड़ा। होफेनहाइम 2 स्टुटगार्ट 1, माइंस 1, फ्रैंकफर्ट 3 और एफसी कोलोन 1, वर्डर ब्रेमेन 1। इटली के सीरी आ में कल एसी मिलान और एसएस लाजियो के बीच मैच ड्रॉ गया 2-2। मिलान के लिए दोनों ही गोल मोरेरा ने स्कोर किए, तो कंसिलियरी और नोसलिन का एक एक गोल इधर एसएस लाजियो की ओर से। अटलांटा 1 कागलियारी 2, जेनोवा 1 फ्रोजिनो ने 1। फ्रांस के लीग 1 में कल मोनाको ने मैच ड्रॉ किया स्ट्रासबूर के मैदान पे 1-1। ओसेया 1 नीस 0, ले हावर 0 अंजे 0, लोरियन 2 टूलूज 2 और पारी एफसी 0 ओलंपिक दे लियों 0। बाकी सभी मैच आज खेले जाएंगे। फ्रांस के लीग 1, इटली के सीरिया, जर्मनी के बुंडेसलीगा और स्पेन के लालीगा में, और खासतौर पे इंग्लिश प्रीमियर लीग में। टेनिस में उम्मीद के मुताबिक कजाकिस्तान की एलेना रायबाकीना यूएस ओपन जीत गई। फाइनल में कल उसने अरीना सबालेंका को 6-4, 5-7 और 6-2 से परास्त किया, और साथ ही उसने विश्व नंबर 1 पोजीशन भी हासिल कर लिया। यदि फाइनल नहीं भी जीतती तो एलेना रायबाकीना फिर भी नंबर 1 होती, और कल तो सोने पे सुहागा। ये उसने यूएस ओपन टाइटल भी जीत लिया। पूरे के इस सीजन उसका ये दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। आज रात पुरुष वर्ग का फाइनल खेला जाएगा यूएसए के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव के बीच। फॉर्मूला 1 मोटोरेसिंग चैंपियनशिप की स्पैनिश ग्रां प्री रेस में कल रात लैंडो नोरिस पोल पोजीशन पे आया। आज की रेस वो पोल पोजीशन से शुरू करेगा, शायद अब उसका टाइम आया है। किमी एंटोनेली दूसरे स्थान पर आया। क्रिकेट में आज से भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला होगा। ये पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। और स्थानीय तौर पर आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा का महाफाइनल आज दिन के 10 बजे से मापू स्थित एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। पिछले सीजन की चैंपियन टीम कैंपस अब्रॉड लायंस फिर से फाइनल में पहुंचे हैं। इस बार उनका सामना कंटिनेंटल चीताज से है, और इस मैच का प्रसारण समय समय पर RM2 रेडियो मस्ती पर साथ में जानकारियां भी दी जाएगी। सो आज सुबह 10 बजे से ICC सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले। फुटबॉल में पहला राउंड ड्रॉ करने के बाद लाक्विया वेव्स दूसरे राउंड में हार गए। अफ्रीकन चैंपियंस लीग में कल रात दक्षिण अफ्रीका के ओलांडो पायरेट्स ने लाक्विया वेव्स को 3-1 से परास्त किया। ऐसे में लाक्विया वेव्स इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। और क्षेत्रीय स्तर पर दुदला बीमा सुवेनिया कप के अंतर्गत आज शाम 3:30 रोशनुआ फुटबॉल मैदान में रिविया जोंपा के ब्लू एंजल्स लोहा लेंगे बेजिटोंबो फुटबॉल क्लब से। सो भूलेगा नहीं, आज रात 7:30 7:30 PM मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी ओल्ड ट्राफोर्ड में। नमस्कार और शुभ दिन।

इस समय सुबह के 7:11 हुए हैं। आज रविवार की सुबह है और रविवार की ये सुबह आप लोगों के लिए मंगलमय रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान से आपके लिए हम करते हैं। हम हैं सुरेखा, आपका साथ दे रहे हैं और आज का के कुछ लम्हे हम आपके साथ बिताने वाले हैं। इन लम्हों में बहुत ही मधुरता, बहुत ही प्यार रहेगा और ऐसे में आप लोगों के जीवन में खुशियाँ, शांति, संतोष हमेशा बरकरार रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ चलिए हम आपके लिए एंटरटेनमेंट का एक गुलदस्ता पेश करते हैं। चलिए इस गुलदस्ते का पहला फूल लेकर आए हैं आपके लिए, ये है मैंने प्यार किया मूवी का गाना और उम्मीद करते हैं कि ये गाना सुनकर आपका मन बहुत खुश हो जाएगा।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसका अपना एक घर हो, जहां वह दिन भर की मेहनत के बाद शाम के समय लौटकर आराम कर सके। घर का निर्माण कौन कर पाता है और घर का सुख कैसे प्राप्त होता है, आइए विचार करें। संसार की आबादी में 10% लोगों के पास घर नहीं है। वे बस अड्डों में, दुकानों के बरामदों में या खुले मैदान में जीवन बिताते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर को मानता है वह प्रार्थना करता है, ओम इहैव ध्रुवाम नि मिनोमि शालाम क्षेमे तिष्ठाति घृतम उक्षमाणा। वेद के इस मंत्र में भक्त भगवान से विनती करता है कि हे प्रभु, मुझ में ऐसी योग्यता आ जाए कि मैं अपने लिए एक घर बना सकूं और इहैव ध्रुवाम, इस घर में आकर मैं बस जाऊं। घर कैसा हो, भक्त कहता है, नि मिनोमि, ऐसा घर हो जो आंधी तूफान बाढ़ आदि के प्रकोपों में भी न टूटे। इस दृढ़ घर में मैं निश्चिंत होकर रहना चाहता हूँ। भक्त यह भी प्रार्थना करता है, शालाम क्षेमे तिष्ठति, हे प्रभु अपने इस घर को मैं रहने योग्य बनाऊं, इसे साफ सुथरा और आकर्षक बनाऊं, इसमें आवश्यकता और आराम की सभी वस्तुएं जुटाऊं। श्रोताओं, केवल ईंटों और पत्थरों से घर घर नहीं बनता।

जानता है, इसीलिए भक्त विनती करता है। घृतम उष्णमाना, हे प्रभु मैं अपने घर में घी चुआऊँ, प्रेम का रस चुआऊँ। घी में स्वाद होता है, नम्रता होती है, बल होता है। घी को किसी भी खाद्य पदार्थ में डाल दिया जाए तो वह पदार्थ स्वादिष्ट, नर्म और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। घर के भीतर घी का काम करने वाला प्रेम है, प्यार घर के हर सदस्य का हृदय नर्म कर देता है। प्यार ही मनुष्य को घर की ओर खींचता है। 10 साल का एक लड़का 5वीं कक्षा में पढ़ता था। वह सप्ताह में 3 दिन शाम को अपनी पाठशाला में ट्यूशन लेता था। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, मैं सप्ताह के अन्य दिनों में भी शाम को ट्यूशन लेना चाहता हूँ। आप मेरे लिए किसी अन्य जगह पर भी ट्यूशन लेने का प्रबंध कर दीजिए। माता पिता ने बहुत हैरानी से लड़के से पूछा, तुम रोज़ ट्यूशन क्यों लेना चाहते हो? लड़के ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैं जिस दिन ट्यूशन लेता हूँ उस दिन शाम को 5:30 बजे घर लौटता हूँ। उस समय आप दोनों अपने अपने दफ्तर से घर वापस लौट चुके होते हैं, मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हैं और मुझे प्यार से खिलाते और पिलाते हैं। जिस दिन ट्यूशन नहीं होता उस दिन आप दोनों से पहले मैं घर लौट आता हूँ। आप दोनों नहीं होते हैं तो घर लौटना मुझे अच्छा नहीं लगता। श्रोताओं, बच्चा हो, वयस्क हो या वृद्ध हो, सबको घर तभी खींचता है जब घर के भीतर प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति उपस्थित होता है। वेद मंत्र कहता है, घृतम तीव्रम जुहोतना, उस घृत को खूब पिघलाओ कि वह बहकर समिधा में समा जाए और अग्नि को जलाकर प्रकाश करे। घी की तरह प्यार हृदय में जम जाता है। जम जाने वाले प्यार को इतना पिघलाना है कि वह बहकर घर के सभी सदस्यों के दिल में समा जाए और आत्मा रूपी अग्नि को जलाकर घर में प्रकाश करे। मंत्र कहता है, उपसमचरेम, इस घर के सभी लोग साथ साथ चलें। एक नदी के पास एक पेड़ था। पेड़ सोचता था कि जिस स्थान पर वह खड़ा है वह स्थान उसका घर है और उस घर का वही राजा है। पेड़ ने उस जगह पर दूसरे पौधों को उगते हुए देखा तो वह डर गया कि कहीं ये पौधे कल उसके घर में राज न करने लगे। इस डर के कारण पेड़ ने पौधों से कहा, मैं तुम्हें अलग करूँगा। इतना कहकर पेड़ ने अपनी जड़ों से जमीन का सारा पानी सोख लिया। पानी न मिलने पर उगने वाले पौधे मुरझा कर मर गए। कुछ दिन बाद वर्षा आरंभ हुई। 15 दिनों तक लगातार भारी वर्षा होती रही। पेड़ के नीचे की धरती कटकर नदी में बह गई और पेड़ धराम से नीचे गिर पड़ा। गिरने पर उसे लगा कि अगर मैं पौधों को इस स्थान से अलग नहीं करता तो आज वे अपनी जड़ों से मिट्टी को बहने से रोक देते और मैं नीचे नहीं गिरता। मैं अकेले ही इस घर में राज करना चाहता था और घर के सदस्यों को मैंने अलग किया। आज मेरी अकेली बूढ़ी जड़ें मेरी रक्षा न कर पाई। श्रोताओं, घर के सदस्यों को अलग करने वाला व्यक्ति अंततः अकेला पड़ जाता है। वीरान घर घर नहीं होता है, इसीलिए
वेद

0: मंत्र में भक्त कहता है, उपसम चरेम, इस घर में हम सब साथ साथ चलें, एक दूसरे का सहयोग करें, कभी अलग न होवें, मिल कर रहें, तभी यह घर हमारे लिए सुखदायक होगा। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

इस समय 7:26 हुए हैं। हमारा आपका साथ है रेडियो मॉरिशस पर और इस वक्त आपको चैन मिल जाए, आपके दिल को करार रहे, आपके मन को संतुष्टि रहे, ऐसे दुआओं के साथ हम पेश करते हैं आपके लिए फुटपाथ मूवी का ये गाना। और इस सुबह में आप लोगों की आप लोगों के लिए मंगल कामनाओं का गुलदस्ता आप लोगों के नाम करते हैं हम।

होगा मराठी प्रोग्राम 1 बजे आप सुनिएगा शिरीष की प्रस्तुति में, फिर 2 बजे चाइनीज प्रोग्राम होगा 3:30 बजे तक, 3:30 बजे चाइनीज प्रोग्रामों के बाद आप रंगारंग यानी कि आज का गुजराती प्रोग्राम रत्ना से सुन पाएंगे। और इसके बाद यानी कि गुजराती प्रोग्राम के बाद पूजा लेकर आएंगे आपके लिए 4 से 5 बजे तक आज का आप और हम कार्यक्रम, और 5 से 6 बजे तक आपके लिए तोहर पसीन कार्यक्रम, भोजपुरी गीतों का प्रोग्राम। फिर आप 6 बजे समाचार बुलेटिन सुनिएगा, जिसके फौरन बाद आप सुनिएगा आज का चाइनीज प्रोग्राम जिसे डेविड लेकर आएंगे। फिर 7 बजे आप तमिल प्रोग्राम सुनिएगा पुवाना की प्रस्तुति में। फिर तेलुगु प्रोग्राम 7:30 बजे आप सुन पाएंगे वंदना से। 7:50 पर गीत गंगा प्रोग्राम शिरीष लेकर आएंगे। 8:10 पर मराठी प्रोग्राम की बारी आएगी और आज मराठी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे गणेश चतुर्थी के अवसर पर। फिर आप सुन पाएंगे आज का भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम, गणेश जी पर आधारित ये प्रोग्राम आप सुनिएगा रात्रि के 8:10 के लगभग, 8:40 पर महफिल शब कार्यक्रम होगा जिसे समीर लेकर आएंगे। फिर 9 बजे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम हर रोज़ की तरह आप सुनिएगा, और आज भोजपुरी तड़का प्रोग्राम लेकर आएंगी उषा। उषा के साथ भोजपुरी तड़का प्रोग्राम 11 बजे तक चलेगा, और 11 से 12 बजे तक आज का पुराने गानों वाला प्रोग्राम सुनहरे पल होगा जिसे नीतूषा लेकर आएंगी। तो ये रहा एक छोटा सा डिटेल हमारे प्रोग्रामों के बारे में। रेडियो मॉरिशस पर साथ देते रहिएगा, आप लोगों के लिए प्यार प्यारे से प्रोग्राम रखे गए हैं। और अभी तो चलिए आप लोगों के नाम करते हैं हम एक ऐसा गाना जिसे हम पुराना गाना कहते हैं, लेकिन यादों की तरह दिल में बसकर ये गाना हमारे दिल का धड़का जाता है। चलिए ज़रा है तो ये एक पुराना सा गाना जिसे किशोर कुमार ने गाया है, लेकिन इस गाने को सुनिएगा दिल विल प्यार व्यार मूवी में। दिल विल प्यार व्यार मूवी वो मूवी है जिसमें बहुत सारे पुराने गाने लेकर नए अंदाज में पेश किए गए हैं। तो कुमार सानू की आवाज में ये पुराना सा गाना नए अंदाज में सुनिएगा।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.
2: दिल से आप तो पुकार ही रहे हैं बप्पा को, दिल से की गई पुकार का जवाब अवश्य देते हैं बप्पा और हर बिगड़ा काम पल में बना देते हैं गणपति जी.

अगर बड़ों जैसा आशीर्वाद मांगेंगे तो आशीर्वाद देंगे गणपति जी, अगर दोस्त बनाना चाहेंगे तो दोस्त भी बन जाएंगे गणपति जी आपके।

0: सुभगा नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुबह के 7:46 हुए हैं, आप लोगों का रेडियो मॉरिशस पर स्वागत।
0: एनबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियां,
2: एक नई अदा आज देखेगा जमाना, खुद क्षमा को लेने आया है परवाना।
3: तुझे आज तक एक मामूली चोर समझता था, लेकिन तू तो आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। जानता ही ये क्या है? बम है, बम।
2: आग में कूद पड़ूं, इरादों में असर रखता हूं, नाम है परवाना।
4: ना शहर में हुआ।
0: रविवार 13 सितंबर को एनबीसी 4 पर शाम के 6:30 हिंदी फीचर फिल्म परवाना, 2003 की मूवी, अजय देवगन और अमिषा पटेल पर फिल्माई गई परवाना।

0: सीसीटीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: पाव किलो का भेजा भी अजीब चीज है। ठीक हो तब भी तकलीफ देता है, और अगर ना ठीक हो तब तो और भी तकलीफ देता है।
2: एक लड़की जिसकी आंखें ये कहती हैं।
0: रविवार 13 सितंबर को MBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म चैंपियन 2000 की ये मूवी सनी देओल और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई चैंपियन।

तो इस वक्त 7:48 हुए हैं, आप लोगों को कुमार सानू की आवाज़ का एक गाना सुनवाएंगे। दिल कितना नादा है मूवी का ये गाना आपकी जबाँ पर तो रहता ही रहता है, चलिए जबाँ को आज दे दीजिए मौका गुनगुनाने का ये गाना। चलिए साथ मिलके गुनगुना लेते हैं हम। गुनगुनाने से मन खुश होता है, याद रखिएगा, गुनगुनाने से कभी मत हिचकिचाइएगा, गुनगुना लीजिए आप।

सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस। तो चलिए जरा कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी है नन्ही चिड़िया और यादों के पत्थर टाइटल का। एक नन्ही चिड़िया थी, उसने तय किया कि वह जीवन भर अपने हर पछतावे, हर दुख जिसका उसने सामना किया और कड़वे शब्द जो उसने कहे, उनके लिए एक भारी पत्थर इकट्ठा करेगी। वह इस दर्दनाक संग्रह को हर जगह एक बैग में लेकर चलती थी। वह यह मानती थी कि यह उसकी रक्षा करेगा और उसे बुद्धिमानी सिखाएगा। हर पल उसे याद आएगा कि ये शब्द मैंने कड़वे कहे थे, तो ऐसे कड़वे शब्द ना कहने के लिए उसे प्रोत्साहन मिलेगा। हर दुख का सामना करना उसको आएगा, ऐसा उसने सोचा। समय के साथ इस शारीरिक और भावात्मक बोझ ने उसे कुचल दिया, जिससे वह कभी उड़ान नहीं भर पाई और न ही अपने आसपास की सुंदरता का आनंद ले पाई। अब बोझ लेकर उड़ रही थी तो वो बोझ पे ध्यान देगी या आसपास की सुंदरता पे ध्यान देगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके सर पे बोझ हो और आप आसपास की सुंदरता का आनंद ले पाएं। उसने अपना हर समय यूं ही दुखों को ढोते हुए, कड़वे शब्दों को ढोते हुए बिताया और ऐसा करने से उसका जीवन खुद एक बोझ बनकर रह गया। चलिए इस कहानी से सीखें कि यादें बोझ की तरह ढोने के लिए नहीं होती हैं, वे आपका मार्गदर्शन करने के लिए होती हैं, न कि आपको नीचे गिराने या बोझ तले दबाने के लिए होती हैं। इसका इस्तेमाल हम अपना जीवन सुधारने के लिए करें या फिर अच्छे पलों को दोबारा महसूस करने के लिए करें, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए। तो इस कहानी से लुत्फ उठाया होगा आपने, यही उम्मीद हमारी है। हम है सुरेखा, साथ आपका दे रहे हैं। बस एक गाना हम पेश कर रहे हैं आपके लिए, दिल है तुम्हारा मूवी का ये गीत है। इस गाने को सुनते सुनते 8 बज जाएंगे और 8 बजे का समय भोजपुरी समाचारों का होता है, सो आशिता से सुनिएगा भोजपुरी समाचार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला ले जा फजीड़ के 8 बजे तक। सबको की नमस्ते, आप प्रणाम। ई भोजपुरी समाचार में सबको की स्वागत करल जाता। सबसे आगे हमने देश के समाचार संगे शुरू करब जा। कमर्शस में शादी के लिए के आदमी के आकर्षण कमती हुआ था, ये पहले निखन नहीं पाटे। 2026 के पहला 6 महीना ई सवाल के जवाब देवेला। 2026 के पहला 6 महीना में मॉरिशस गणराज्य में 3,431 शादी दर्ज कर गल रहल। ई संख्या अगल बरिस के यही अवधि के मुकाबला में 2.4% कमती भइल। शादी में कमती ई सिलसिला, ई जो सिलसिला बाटे ई कुछ बरिस से चलते आवता। 2023 के बरिस के दिगपत हुआ 8,654 गो शादी होल रहल। 2024 में 8,220 को आर 2025 में यानी कि गल बरिस 7,715 शादी दर्ज कर गल रहल। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस अनुमान के मुताबिक एक बरिस लगभग 7,490 गो शादी हो सकी, यानी कि शादी के जोन आकर्षण बा उ घटते जाता। आदमी कमती से कमती शादी करते जाते वन जा, पर ई सब आंकड़ा के पाछे समाज में होत बदलाव के भी दर्शावेला। आदमी अब शादी देरी से करत वन जा और ई फैसला पहले से जस्ती व्यक्तिगत पसंद पर आधारित लगता, यानी कि जन छोकरी हवन जा उ लोग जस्ती अपन करियर पर आर अपन आत्मनिर्भरता पर जस्ती उ लोग विश्वास रखेलन जा। आज जोन पुरुष हवन जा छोकरा हवन जा उ लोग जस्ती अपन करियर बनाए पर अपन पेशा के सुधारे में घर बनाए में इस सब में समय देवे लन जा। 3 दिन ले मॉरिशस बनल रहल दुनिया भर से आल भारतीय मूल के आदमी खातिर एगो केंद्र। 2 सदी पहले भारत से निकल रहल एगो जहाज, ओकर में अपन संगे अपन सपना अपन उम्मीद और एगो समृद्ध विरासत के लेके उ जहाज रवाना होल रहल। आज उहे सब प्रवासी के आय होला पीढ़ी और अभी के जो पीढ़ी हवन जा अलग अलग हिस्सा से मॉरिशस में एकजुट हो लन जा। जहाँ पर 16वां गोपियो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के आदमी के बीच रिश्ता के मजबूत करे के युवा पीढ़ी कारोबार रोजगार के अवसर संस्कृति या भारतीय भाषा के विरासत के आगे बढ़ाए की जैसा मुद्दा पर चर्चा भइल। 150 गो से जस्ती प्रतिनिधि के भागीदारी होला ई 3 दिन के सम्मेलन में। प्रवासन के भूमिका और अलग अलग समुदाय के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर देवल गल। आज इस सम्मेलन के अंतिम दिन है, जहाँ पर आज के इस अंतिम दिन में दिवंगत धनदेव बहादुर के विशेष श्रद्धांजलि देवल जाए, जेकर बाद कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में दिन के 1 बजे समापन और पुरस्कार समारोह के आयोजन हुई। दूसरा समाचार में विजन 2050 के शुरू होइला के करीब 9 महीना बाद अब ई अमल में आने की तैयारी शुरू हो गल बाटे। ये राष्ट्रीय रणनीति मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बदलाव आने में अहम भूमिका निभाए होला बाटे। ई से नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2035 के जरिए लागू करल जाए। एकर अमल पर नजर रखे खातिर नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल भी बनावल जाए। एकर अलावा 2027 से 2030 के अवधि खातिर 10-point implementation plan लागू करल जाए। एकर संगे नेशनल डिलीवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट

0: भी बनावल जाए। एकर मकसद है अलग अलग मंत्रालय के बीच बेहतर तालमेल कायम करे के और संगे ही दूसर संबंधित पक्ष संगे भी समन्वय मजबूत करे के। बिजली के बारे में बताया जाए तो बिजली के बिल कमती करे के और उपभोक्ता लोग के ऊर्जा के मामला में जस्ती आत्मनिर्भर बनाए के उद्देश्य से लील एनर्जी ई सप्ताह अपन नवा गुड वी ऑल इन वन फोटोवोल्टाइक पार्क लॉन्च कर ली बाटे। लील एनर्जी के मैनेजर लोइक सुरे के अनुसार ई पहल मॉरिशस के परिवार के अपन सौर ऊर्जा अपन से बनाए के आर उकरा उकर भंडारण करे खातिर प्रोत्साहित करे के सरकार के नीति के अनुरूप बाटे। एकर खातिर इस्तेमाल करे होला अलग अलग उपकरण, एक ही गो टेक्निकी प्रणाली के तहत काम करे खातिर तैयार करल जाए। परिवार के सरकार देने से 25% लेकिन सब्सिडी मिले सकी जोन स्थापना के कुल लागत पर सब अधिकतम 75,000 रुपया ले है। ये सहायता हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम के तहत देवल जाता जिसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस करता। दूसरे देश के समाचार में यूक्रेन में रशिया दिन से करगल हमला में कमती से कमती 11 जना के मौत हो गल बाटे। ई बीच यूक्रेनियन डिफेंस फोर्स बताइले बाटे कि रात के वक्त रशिया के समारा इलाका में एगो सिंथेटिक रबर प्लांट पर ड्रोन हमला करगल। ई फैक्ट्री रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के सामान की आपूर्ति करेला। ई जानकारी ऐसा समय में सामने आल जब यूक्रेन और रशिया के बीच हमला और जवाबी कार्रवाई जारी बाटे। तेरे संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। अभी 8:05 होता।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मरने के समाचार सुना। मेजर लेन लापी पितो में 73 बरिस के 3 कोड़ी 13 बरिस के श्री कमल नारायण हरिल, श्री कमल नारायण हरिल जिनकरा कमल के नाम से भी अन्य जिससे जानते जा कि मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज फजीर की 10 बजे इनकर घरे इनकर बेटी संध्या हरिल के घरे लापे पितो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पितो की शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टूडे एट 10 AM आराफात लेन मुसलमान सेंट एंड्रे में, आराफात लेन मुसलमान सेंट एंड्रे में 70 बरिस की 3 कोड़ी 10 बरिस की श्री शुभन गुल्फी, श्री शुभन गुल्फी जिनका शुभन के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होकर बैठे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा ई शोक समाचार एक बार फिर सुन ल जा। आराफात लेन मुसलमान सेंट एंड्रे में, आराफात लेन मुसलमान सेंट एंड्रे में 70 बरिस के 3 कोड़ी 10 बरिस के जनाब शुभन गुल्फी जिनका शुभन के नाम से भी आदमी जैसे जातन जा इंतकाल कर गल हुआ। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा नसरुल्ला गुल्फी के घरे मुसलमान सैतौत से उठा के दफनाए खातिर प्लेंदी पापाई के कब्रस्तान ले जावा जाए। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM बेलरोज क्लेमेंसिया में 75 बरिस की 3 कोड़ी 15 बरिस की श्रीमती बसंती लखन जिनकरा ललिता के नाम से भी आदमी जैसे जातन जाके मृत्यु होकर बाटी। इनकर अर्थी आज 2:00 इनकर बेटा शिव प्रसाद लखन के घर क्लेमेंसिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जावा जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM मौगोयाव कौंडवास पावे में 42 साल की 2 कोड़ी 2 बरिस की कुमारी कीर्ति दानू जिनकरा मीनू के नाम से बेद में जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज फजीत के 11 बजे इनकर माँ माया दानू के घर कौनेमास पावे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मेजिन कौनेमास के शमशान भूमि ले जावा जाए। क्रिमेशन टूडे एट 11 AM जापानी रोथ्रियोले में 81 बरिस के 4 कोड़ी 1 बरिस के श्री जयकरण अदुयाल जिनकरा सुनन के नाम से भी में जिस जानते हैं जाके मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन की 2 बजे इनकर बेटा राजा अदुयाल के घरे थ्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर जैसेस थ्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रामचंद्र रोड रिशमोस सेंट्रल फ्लाक में 83 बरिस के 83 years old के श्री गोइनसामी चिलेम्बेन जिनकरा तंगावेल के नाम से भी में जिस जानते हैं जाके मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज 12:00 इनकर घरे रिश्मो सेंट्रल फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूटे एट 12:30 PM सागर लेन कौकावाल क्यूपिप में

सागर लेन कंकाल के उपीप में 56 बरिस के डुकरी 16 बरिस के श्री जितेंद्र गोपी जिनकरा गोपी कॉफिया के नाम से भी आदमी जैसे जाते हैं जाके मृत होकर बाटे इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर घरे कंकाल के उपीप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बीघा के शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रिमेशन टूडे एट 2 PM लोई स्ट्रीट राय रोड लियो शिते रोज में लोई स्ट्रीट राय रोड लियो शिते रोज में 45 बरिस के दुकोरी 5 बरिस के श्रीमती प्रविता कायतू पैदाशनाम जगू और जिनका फी के नाम से बेद में जिससे जाते हैं जाके मृत होकर बाटी इनकर अर्थी आज फजर की 11 बजे इनकर घरे लियो शिते रोज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वालिद पद की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 11 AM रोजलिन लेन कासिमे 60 बरिस के 3 कोड़ी बरिस के श्री मनाजी आबाजी जिनकरा दादू कैकारी अपला के नाम से भी इनमें जिस जाते हैं जाके मृत्यु होकर बाटी इनका अर्थी आज 11 बज के आधा फजर की इनका घर ही काशी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लिसालीन के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 11 AM अटलास रोड गुडलैंड्स में 60 बरिस के 3 कोड़ी बरिस के श्री जगदीप लखवा जिनकरा देव आनंद के नाम से भी इनमें जिस जाते हैं जाके मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज सांझ के 3 बजे इनकर बेटी इनकर पत्नी श्रीमती निशा लखवा के घरे गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाहुची के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 3 PM पाई रोड पाई में 58 बरिस के 2 कोड़ी 18 बरिस के श्री राजेंद्र नाथ अकू जिनकरा गौसों के नाम से बेद में जैसे जाते हैं जा और जो आगे दागुचा रहतलन के मृत्यु होकर बातें इनकर अर्थी आज फजर के 9 बजे इनकर बनहोई विनय गणपत के घरे पाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जाए जाए क्रिमेशन टूडे एट 9 AM रॉय रोड कासी में 58 बरिस के 2 कोड़ी 18 बरिस के श्रीमती माधवी लाचा के मृत्यु होकर बाटे इनकर अर्थी आज फजर के 10 बजे इनकर माँ कुशीला लाचा के घरे काशी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लिसालीन पोर्ट्रिस के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 10 AM रुद बॉशेरी मुकाम में 65 बरिस के 4 कोड़ी 5 बरिस के 3 कोड़ी 5 बरिस के श्रीमती भामा रामचंद जिनग्राफी के नाम से बेन में जिस जाता है जाके मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज फजर के 10 बज के आधा इनकर भाई अशोक रामचंद के घरे मौका से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकोसा सैपिया के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 10:30 AM वॉशेरी रोड मुकाम में 88 बरिस के 4 कोड़ी 8 बरिस के श्री प्रेमदत्त गुलाम जिनकरा बालू के नाम से बेदमी जैसे जाते हैं जाके मृत्यु होकर बाटे इनकर अर्थी आज दिन के 2 बज के आधा इनकर पत्नी अनीता गुलाम के घरे मौका से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैकोसा सैपिया के शमशान भूमि ले जाओ जाए क्रिमेशन टूडे एट 2 PM कथोबो रोड बोनाक्योय में 57 बरिस की 2 कोड़ी 17 बरिस की श्री चित्रंजन माधो जिनकरा राजू मौसम ओची के नाम से भी आदमी जैसे जाते हैं जाके मृत्यु होकर बाटे इनकर अर्थी आज फजर की 11 बजे इनकर घरे मोनाक्योय से उठा के अंतिम संस्कार करती है लावों के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टूडे एट 11 AM शोक में डूबल इस सब परिवार के संगे हमने के दिली हमदर्दी बाटी।

0: tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.
1: Artso 19 kHz par.
2: Radio Mauritius.
3: तो इस समय 8:14 हुए हैं। हमारा आपका साथ रेडियो मॉरिशस पर है। हम हैं सुरेखा आपके साथ और लेकर आए हैं आपके लिए मैसेजेस वाला प्रोग्राम, आपके लिए पैगामों वाला प्रोग्राम, पैगाम आपके नाम। पैगाम आपके नाम हर संडे को पेश करते हैं हम भोजपुरी के समाचारों के बाद, यानी कि लगभग 8:15 से शुरू करते हैं। 9 तक का ये प्रोग्राम होता है और इस शो में आप हमारा साथ इतने प्यार से देते हैं कि बार बार चले आते हैं हम ये प्रोग्राम पेश करने के लिए। आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों के बीच में कोई भी अच्छा सा प्यारा सा इवेंट हो, आप अपने अपनों को मैसेजेस भेजना चाहते हैं, इस इवेंट के लिए विश करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस प्रोग्राम में भाग लीजिएगा। मैसेजेस भेजने के लिए 5251-7005 नंबर है हमारा, और कॉल करना चाहते हैं अपने मैसेज बताने के लिए तो बेशक 4028085 पर फ़ोन कीजिएगा हमको। हमारा साथ तो हमारे श्रोता बड़ी सुबह से दे रहे हैं। 6 से हमारी आपकी ये मुलाकात शुरू हुई है और हमारे कई श्रोता है जो हमारे साथ हैं सुबह 6 से, जिनमें शामिल है देवी जी। देवी जी तो हमारा साथ हमेशा देती हैं। माला सुमागो जी हैं हमारे साथ, सूरज शर्मा सजादा जी हैं हमारे साथ, अनीता जी, विश्वानी जी, अमृता जी, सुनीता बिहारी जी है, सुदेवी जी भी हैं और साथ साथ माला जेरी जी भी है। तो हमारा साथ देते रहिएगा, हमारी आपकी मुलाकात बहुत प्यारी सी रहेगी। ज़िंदगी में जो भी सपना देखा है आपने, आपका सपना सच हो जाए, ज़िंदगी का सपना बड़ा प्यारा सा होता है। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी लगन लगती है, पर जो सपना पूरा करना चाहते हैं आप, तो आप उस सपने को पूरा कर जाएंगे, ये हमारी दुआ है।

तो चलिए ज़रा बेस्ट विशेस हम भेजते हैं जन्मदिन मनाने वालों को। अमृता जी का जन्मदिन है जो गांव गुब रहती है। अमृता जी की बहन सुनीता जी ने उनको ढेर सारी मंगल कामनाएं दी हैं, दिल खोल कर उनको आशीर्वाद दिया है, दिल खोल कर उन्हें जन्मदिन की मंगल कामनाएं दी हैं। अमृता जी को उनके भाई अजय, बहन गीता और उनके भाई अजय और उनकी भाभी गीता और फिर आरुष की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं अमृता जी, आपको आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं।

मंगल कामनाओं का गुलदस्ता मिला है ट्रेढ़ा सिबरत जी को। फिव्या देजाओगी के ट्रेढ़ा सिबरत जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उनको मंगल कामनाएं बेटे जेशन बेटे कृष्ण की तरफ से मिली है, पांच नाती पोतों की तरफ से और कथोबोन के सूर्यदेव और अम्माला सुमारू जी की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू ट्रेढ़ा सिबरत जी।

फातिमा जी। फातिमा जी हमारे साथ दे रही हैं न्यू ग्रोव से, और उनको हमारा प्रोग्राम सुनना अच्छा लग रहा है। सुबह की ये बेला है, सुबह की इस बेला में आप लोगों का साथ देना हमें भी बेहद अच्छा लगता है। वैसे आपका साथ देना तो हमें हमेशा अच्छा लगता है। सुबह की बेला में कुछ चार चांद लग जाता है इस प्यारे से मोमेंट में। और साथ देने वालों में है राजन लक्ष्मण जी, गायत्री जी, लाफ्लोरा से, गायत्री जी नुवेल फ्रांस से, अनीता जी फ्लिगन फ्लाक से, और नंदा जी पाई से हमारा साथ दे रहे हैं। सो आपको मंगल कामनाएं, गणपति जी की आपको मंगल कामनाएं। आज के दिन की संडे बहुत प्यारा रहे आपका, यही उम्मीद रखेंगे हम। इधर चलिए हम बर्थडे विशेष पेश करते हैं, और बर्थडे विशेष में शामिल हैं सुनीता बिहारी जी। सुनीता बिहारी जी जन्मदिन की मंगल कामनाएं दे रही हैं बहू प्रिया को। शुभकामनाओं का गुलदस्ता सुनीता जी की तरफ से, उनके पति संदीप की तरफ से, देवर श्रवण की तरफ से, दागुचे के बिहारी परिवार की तरफ से, क्यूपिप के सूरत परिवार की तरफ से। भगवान आपको बहुत ही तरक्की दे, भगवान आपको बहुत ही सुख शांति दे, ऐसी प्रार्थना की है सुनीता जी ने आपके लिए प्रिया जी। और मंगल कामनाओं का गुलदस्ता हम भी पेश करते हैं आपके लिए।

आप हमेशा खुश रहें, आप हमेशा सुखी रहें और हमारा साथ देते रहें प्रिया जी, यही हमारी दुआ है। और दुआओं का गुलदस्ता आपके लिए हम पेश कर रहे हैं जिसमें शामिल है आपकी खुशी।

इधर सुदेवी जी का कहना है कि उनके परिवार में भी जन्मदिन की खुशियां मनाई जा रही हैं। 12 सितंबर को यानी कि कल ऑस्ट्रेलिया के छोटे से जैस ने अपना जन्मदिन मनाया और जन्मदिन की मंगल कामनाएं उनके फोर्थ बर्थडे पर उन्हें मिल रही है मम्मा लीना की तरफ से, पप्पा विक्की, बहन तिया, चाचा विमल, चाची वर्षा, कजिन निया, वीर की तरफ से वकवा की नानी, वकवा के मामू, मामी, दादी और सभी कजिन्स की तरफ से, सभी परिवारों की तरफ से, राम रतन, राम गुलाम और कुआहू तथा चौतन परिवार की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू प्यारे से जैस। आपके जन्मदिन पर आपको इतनी सारी खुशियाँ मिले कि आप बटोरते बटोरते समय बिता डालें, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं।

तो चलिए जरा शादी की शहनाइयाँ हम भी बजा लें साथ मिलके अनीता जी के। अनीता जी ने मौदाल बेस से बताया कि शादी की बधाइयाँ बज रही हैं उनके परिवार में। उनके परिवार में है उनके भतीजे यानी इतु, उनकी शादी हो रही है यशमीरा से 16 सितंबर को, और कनाडा से आ रहे हैं शादी के लिए। यशमीरा और यानिश की शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं पूरे परिवार में। भाई जय सिंह की तरफ से, भाभी ज्योति की तरफ से, 3 फूफू, 2 चाचा, इतु परिवार, लालजी परिवार, गोगा परिवार सभी मिलकर मंगल कामनाएं दे रहे हैं। यशमीरा और यानिश को मंगल गान गाया जा रहा है पूरे परिवार में। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं यानिश और यशमीरा।

दुल्हे दुल्हन को हमारी तरफ से मंगल कामनाएं, आपके जीवन में खुशियों का गुलदस्ता हमेशा हमेशा खिलता रहे। चलिए जरा हम बर्थडे विश करते हैं। बर्थडे है कविता जी का, बॉम्बुकी कविता जी अपना जन्मदिन पूरे परिवार के बीच में बड़े प्यार से बड़ी खुशी खुशी मना रही है। उनके पति आश्विन की तरफ से, बेटी गुड़िया की तरफ से और बॉम्बू के पूरे सिचन परिवार की तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ।

और साथ ही साथ मौताबा के रामदत्त काशी जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं कल, बहुत ही शुभ दिन पर गणपति जी का जन्मदिन और उनका जन्मदिन। वाव, कितनी खुशी की बात, कितना मंगल दिन है उनका जन्मदिन। सो रामदत्त काशी जी बहुत ही प्रसन्न है इस बर्थडे पर, ख़ास तौर पर क्योंकि यह बर्थडे गणपति जी के शुभ दिन पर आ रहा है। सो मौताबा के रामदत्त काशी जी को मंगल कामनाएं उनकी बहन लीला की तरफ से, उनकी पत्नी माया की तरफ से, बेटे विराज, बहू निशी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। हैप्पी बर्थडे टीम।

तो चलिए लीलो जी ने गौबा से फ़ोन किया, उनके बेटे सुबिराज जी का जन्मदिन था 11 सितंबर को जो इटली में है, और उनकी बहन आरती की तरफ से भांजे भांजियों की तरफ से अंशिनी और अवीश की तरफ से मंगल कामनाएं, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और लीलो जी का कहना है कि कमल जी का भी बर्थडे है, उनको मामा मानती की तरफ से पत्नी निष्ठा और बेटे कियान की तरफ से मंगल कामनाएं।

इधर आशा जानू जी का मैसेज आया कुटेज से और उन्होंने कहा कि उनके नेफ्यू ऋषभ का बर्थडे था गत गुरुवार को और 5 साल का प्यारा सा बेटा हुआ है और ऋषभ को मंगल कामनाएं नानी माँ कुमारी की तरफ से, भाई शुभम, मौसी आशा, मामा आरती, पापा राज और पूरे जानू परिवार की तरफ से हैप्पीनेस, गुड हेल्थ उसके जीवन में हमेशा रहे, भगवान उन पर कृपा अवश्य करते रहे, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा उन पर कृपा करते रहें।

चलिए जरा हम एक लिस्ट पढ़ते हैं जन्मदिन की मंगल कामनाओं की। आशिल बौशेखी के रहने वाले हैं, उनका बर्थडे था, उनकी पत्नी नीतुषा की तरफ से मंगल कामनाएं। निष्ठा सुखी नाम रहती है बनवा परिवार की तरफ से, उनके पति विनय की तरफ से, बेटी रुशाली और वैष्णवी की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू निष्ठा जी। कविता जी बौशेखी की अपना बर्थडे मना रही है, वर्षा जी बौशेखी की, फिया जी बौशेखी की अपना जन्मदिन मना रही है, पूरे आदिन परिवार की तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं। कुंदन और शकुन भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। धीरज आदिन जी को भी बहुत सारी मंगल कामनाएं, उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धीरज जी, शकुन जी, कुंदन जी, फिया जी, वर्षा जी, कविता जी, निष्ठा जी और आशील जी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी खुशियों

0: और हम अंत में सभी को मंगल कामनाएं देते हैं। गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं आप लोगों को, आपके जीवन में गणपति जी लेकर आए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा संतोष। और यहां पर माला झरी जी ने सभी हमारे सुनने वालों को मंगल कामनाएं भेजी हैं। गणपति जी उनके घर आएं और उनके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आएं। साथ में अनीता जी हैं फ्लिकॉन फ्लैक से, हमारे सभी सुनने वालों को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं दी हैं। विश्वानी दुमन जी वाकवा से, उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर गणपति जी के आगमन की तैयारी करने वाले, गणपति जी का स्वागत करने वाले सभी भक्तों को मंगल कामनाएं भेजी हैं। आशा जानू जी भी गणपति जी की शुभ गणपति जी की जयंती, उनके इस पर्व पर सभी को दिल से मंगल कामनाएं भेज रही हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से। गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं हमारे सभी श्रोताओं को, और पप्पा जी आएंगे सबके जीवन में खुशियां लाएंगे।
1: महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ,

गणेश चतुर्थी की खुशियां मनाते रहिए, भगवान आपको प्रसन्नता का ही वरदान दे और आपको गणपति जी हमेशा सुखी रखे, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम आज का पैगाम आपके नाम कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। 9 बजे आप सुन पाएंगे आज के संक्षिप्त समाचार और उसके बाद स्पेशल गणेश चतुर्थी पर एक प्रोग्राम होगा, ये होगा मंगलाचरण कार्यक्रम के दौरान मराठी भाषा में। ये कार्यक्रम सुनिएगा सीताबाई दरमिया से। हमारी आपकी मुलाकात अगली बार होगी, तब तक के लिए हम सुरेखा आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ रविवार, शुभ गणेश चतुर्थी, नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरें लेकर स्टूडियो में आ गई है आशिता, तो चलिए उनसे सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। तीन दिनों दो सदियां पहले भारत से निकले जहाज अपने साथ सपने, उम्मीदें और एक समृद्ध विरासत लेकर रवाना हुए थे। आज उन्हीं प्रवासियों की आने वाली पीढ़ियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मॉरिशस में एकजुट हुई हैं, जहां 16वें गोपी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय मूल के लोगों के बीच रिश्तों को मजबूत करने, युवा पीढ़ी, कारोबार, रोजगार के अवसर, संस्कृति और भारतीय भाषाओं की विरासत को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 150 से ज्यादा प्रतिनिधियों की भागीदारी वाली इस तीन दिवसीय सम्मेलन में प्रवासन की भूमिका और अलग अलग समुदायों के बीच संवाद के महत्व पर भी जोर दिया गया। आज सम्मेलन के अंतिम दिन दिवंगत धनदेव बहादुर को विशेष श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसके बाद कालबास के ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट सांस्कृतिक केंद्र में दोपहर 1 बजे समापन और पुरस्कार समारोह आयोजित होगा। विजन 2050 के शुरू किए जाने के करीब 9 महीने बाद अब इसे अमल में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये राष्ट्रीय रणनीति मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसे नेशनल डेवलपमेंट प्लान 2035 के जरिए लागू किया जाएगा। इसके अमल पर नजर रखने के लिए नेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल बनाया जाएगा। इसके अलावा 2027 से 2030 की अवधि के लिए 10-point इम्प्लीमेंटेशन प्लान लागू किया जाएगा। साथ ही नेशनल डिलीवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट भी बनाई जाएगी। इसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल कायम करना है, साथ ही दूसरे संबंधित पक्षों के साथ समन्वय मजबूत करना भी है। बिजली का बिल कम करने और उपभोक्ताओं को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लील एनर्जी ने इस सप्ताह अपना नया गुड वी ऑल इन वन फोटोवोल्टाइक पैक लॉन्च किया है। लील एनर्जी के मैनेजर के अनुसार ये पहल मॉरिशस के परिवारों को अपनी सौर ऊर्जा खुद बनाने और उसे स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग उपकरण एक ही तकनीकी प्रणाली के तहत काम करने के लिए तैयार किए गए हैं। परिवारों को सरकार की ओर से 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है और स्थापना की कुल लागत पर अधिकतम 75,000 रुपये तक की ये सहायता हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम के तहत दी जा रही है, जिसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी फ्रांस में एक पैसेंजर ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 44 लोगों को चोट लगी है। इनमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायलों में एक 18 वर्षीय महिला भी शामिल है, जिसे गंभीर हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार रोएन एंड कैन के बीच चल रही इस ट्रेन में 186 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री फिलिप तबागो ने बताया कि शुक्रवार शाम क्लेओ के पास हुए हादसे की जगह पर 140 दमकल कर्मी और अन्य आपातकाल टीमों को तैनात किया गया। हादसे का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, हालांकि फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्टों में इसे साबोटाज की संभावित घटना बताया गया है। अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने बड़े पैमाने पर हताहतों से निपटने की आपातकाल योजना सक्रिय कर दी है। ये हादसा स्थानीय समयानुसार रात करीब 8 बजे हुआ। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। Your news.

वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एमपीसी चावतीने तुम्हास

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।

0: किती सुंदर भाव आणि किती गोड चाल, रसिको हो या मधुर सुरांनी आपल्या संगीत प्रवासात आणखी एक सुंदर रंग भरला.
1: Vous êtes connus qui m'envie là? Un bon panir bata masala avec un naan. Yummy!
2: Tu connais qui me fait avec panir, moi? Ban brochette. Mou mezzot mariné dans yaourt avec la poudre tandoori. Grillé le barbecue, li extra bon.
3: Pati qui t'es affaire, capable à faire avec naan et panir. Frire, nature ou en bloc, capable à préparer naan et panir pour tout repas et pour tout ce qui ont envie manger. Naan et panir, le vrai panir, fait avec du lait de vache frais.
0: So good, so pure, it's Nana. गणरायाचा आगमनाची चाहूल लागताच मन आतुरले आहे. डोले बाप्पाच्या आगमनाची वाट पाहत आहेत. या सुरांतून जणू

0: yellow barbecue li extra bon.
1: Pati ki ti zafè capable faire avec nanak paneer. Frire, nature ou en bloc, capable préparer nanak paneer pour tout repas et pour tout ce qui ont envie manger. Nanak paneer, le vrai paneer fait avec du lait de vache frais.
2: So good, so pure, it's nanak.
3: Mangalacharan, karikram chaluahi medium wave atashe, 19 kHz surile. रसिक श्रोत्यांनो, गणरायाचं नाम घोषाने वातावरण मंगलमय झाले आहे. भक्तीचे हे मधुर सूर या क्षणी आपल्या भेटीला येत आहे.

0: चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। बिजली का बिल कम करने और उपभोक्ताओं को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिली नेहरजी ने इस सप्ताह अपना नया वुड गुड वी ऑल इन वन फोटोवोल्टाइक पार्क लॉन्च किया है। लिल एनर्जी के मैनेजर के अनुसार ये पहल मॉरिशस के परिवारों को अपनी सौर ऊर्जा खुद बनाने और उसे स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने की सरकार की नीति के अनुरूप है। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग उपकरण एक ही तकनीकी प्रणाली के तहत काम करने के लिए तैयार किए गए हैं। परिवारों को सरकार की ओर से 25% तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो स्थापना की कुल लागत पर अधिकतम 75,000 रुपये तक है। ये सहायता हाउस होल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक ग्रांट स्कीम के तहत दी जा रही है, जिसका संचालन डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस करता है। इसके अलावा रिजवी स्थित एंटोमोलॉजी डिवीजन में अब एक नया एक्सरे इराडिएटर काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल फलों की मक्खियों के नर कीटों को प्रकृति में छोड़ने से पहले निष्क्रिय करने के लिए किया जाएगा। ये प्रक्रिया स्टेरिल इंसेक्ट टेक्निक के तहत की जाएगी। ये नई टेक्निक फलों की मक्खियों जैसे कीटों से निपटने के इस तरीके को और मजबूत करेगी और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कम करने में भी मदद करेगी। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल चाहते हैं कि मॉरिशस इस टेक्निक के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एक उदाहरण बने। क्या मॉरिशस के लोगों में शादी का आकर्षण अब भी पहले जैसा है? 2026 के पहले 6 महीनों में मॉरिशस गणराज्य में 3,431 शादियां दर्ज की गई। ये संख्या पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 2.4% कम है। शादियों में कमी का ये सिलसिला कुछ सालों से जारी है। 2023 में 8,654, 2024 में 8,220 और 2025 में 7,715 शादियां दर्ज की गई थी। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के अनुसार के मुताबिक इस साल करीब 7,490 शादियां हो सकती हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे समाज में आ रहा एक बदलाव भी दिखाई देता है। लोग अब शादी देर से कर रहे हैं और ये फैसला पहले से ज्यादा व्यक्तिगत पसंद पर आधारित लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया में एक यात्री फेरी के समुद्र में निकट में फंसने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 102 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इंडोनेशिया की खोज और बचाव एजेंसी के मुताबिक वर्गो ट्रांसपोर्ट 8 नाम की इस फेरी में 243 लोग सवार थे और खराब मौसम के बीच जहाज से संपर्क टूट गया। फेरी सुराबाया से दक्षिण कालिम नान के बंजरसानी शहर जा रही थी और रविवार तड़के यानी कि आज करीब 2 बजे बंजर मासिन से 150 किलोमीटर दक्षिण में आखिरी बार इसकी जानकारी मिली थी। बाकी यात्रियों की तलाश जारी है। खोज और बचाव जहाजों के साथ एक हेलीकॉप्टर भी अभियान में लगाया गया है, जबकि आसपास के सभी जहाजों को यात्रियों के किसी भी संकेत की सूचना देने के लिए सतर्क किया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

अज़्ज़वजल हम सुनहरे वाक़यात का ज़िक्र करेंगे जो इस माह मुबारक में पेश आए थे। मकसद यही है कि हम अपने बुज़ुर्गों को याद करें, उनकी मुबारक ज़िंदगियों से कुछ सीखें, अपने ईमान को जीला बख्शें। उम्मीद है आप आखिर तक इस बज़्म का हिस्सा बनेंगे। और सामईन, आप लोग हर हफ्ते की तरह अपने पैगाम, दुआएं, फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर वही है 5251707005, 5251707005। आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए फ़िलहाल के लिए हसब मामूल बज़्म अकीदत का बाकायदा आगाज़ सूरा मुल्क की तिलावत से करते हैं। बाग़ौर व अदब समात फरमाइए।

सामईन कराम, अभी आपने सूरा मुल्क की तिलावत समात फरमाई। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। सामईन, आइए सबसे पहले बात करते हैं महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी इमामुल औलिया गौस आज़म हज़रत सैदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाही की, जिनका उर्स पाक इस महीने में मनाया जाता है। आशिकान गौस आज़म रहमतुल्लाही 11वें शरीफ मनाते हैं। बिलयक़ीन पीरान पीर रोशन ज़मीर गौस पाक रहमतुल्लाही अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदे, मकबूल तरीन वली बल्कि तमाम वलियों के सरदार हैं। सामईन, मोहतरमा नाज़मुन पिया बुकस की तरफ से हमें पहला पैगाम मौसूल हो चुका है। वो कहती हैं कि जो तिलावत मैं लगाता हूँ वो उनके दिल को छू लेती हैं, उनकी आँखों में नमी ले आती हैं। वो इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करती हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसी वजह से मैं हर हफ्ते सूरा मुल्क की तिलावत लगाता हूँ। ये एक तरह से तमाम मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत का बायस भी बन जाता है। मगर इस खूबसूरत पैगाम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए सामईन, तिलावत कलाम पाक के बाद आइए कसीदा बुर्दा शरीफ मुलायजा फरमाएं।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब अल्लाह अज़्ज़वजल किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे अपना कुर्ब ख़ास अता फरमा कर ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल व कमालात से नवाजता है कि अक्लें हैरान हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह पाक के ऐसे मकबूल वली थे जिनकी ज़ात जमाल मुस्तफ़ा का आईना थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ कसीरुल करामात बुज़ुर्ग थे बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दिगर औलिया कराम से बरकर करामात व इनामात से नवाजा था। अल्लाह अज़्ज़वजल का करोड़ों एहसान है कि उसने हम जैसे गुनहगारों पर करम फरमाकर हमें ऐसे बरगुजीदा वली कामिल के दामन करम से वाबस्ता होने की सआदत से सरफराज फरमाया। सामईन, तगीयुले से कौमाली और बंधु फैमिलीज़ में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मगफरत फरमाए और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। सामईन, आप लोग भी इसी तरह अपने पैगामात, अपनी दुआएं हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 5251700055 5251700005। और ये अगला कलाम लावेनिया सैंपिये से जनाब शफीक के नाम।

अल्लाह तबारक व ताला मौलाना शमीम अजहरी रहमतुल्लाही की कब्र को गुलजार जन्नत बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, कल जनाब अशरफ कलीम की सालगिरह है, उनकी अम्मी नाजरा, बेटी अलीजा और

सामईन कराम, सरजमीन हिंद पर अल्लाह तबारक वताला ने जिन औलिया कराम को पैदा फरमाया उनमें से एक सिलसिलाए चिश्तिया की अजीम पेशवा मशहूर वली उल्ला हज़रत सैदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही हैं। आप रहमतुल्लाही ने पूरी ज़िंदगी तलब इल्म, इबादत व रियाजत, मुजाहिदा और लोगों की तरबियत व इस्लाह में गुजारी। आप रहमतुल्लाही नहायत ही मुत्तकी, सखी, ईसार करने वाले हुस्न अखलाक के पैकर थे। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही का विसाल माह रबीउस्सानी की 18 तारीख को हुआ था। आपका मज़ार दिल्ली में वाक़ है, जहां हर वक्त ज़ियारत करने वालों का हजूम रहता है। सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। क्यूपिप से मोहतरमा रुबीना की तरफ से इसाल सवाब की दरख्वास्त उनके वालिद मरहूम अब्दुल मन्नान चुनू और भाई मरहूम रियाज खान चुनू और तमाम रिश्तेदार जो चुनू फैमिली से इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह तबारक वताला सबकी मगफरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।

मोहतरम सामईन, अब हम एक ऐसी इल्मी शख्सियत का ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं जिनकी खिदमात से शायद हर मुसलमान बराह रास्त वाकिफ ना हो, मगर हमारी दीनी ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल के जवाबात तक पहुँचने में उनका इल्म आज हमारी रहनुमाई कर रहा है। हज़रत अल्लामा सैयद मुहम्मद इब्ने अमीन इब्ने आबदीन शामी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें आम तौर पर इमाम इब्ने आबदीन शामी के नाम से जाना जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह हनफी के अजीम तरीन उलमा में शुमार होते हैं। इबादत, निकाह, तलाक, तिजारत, विरासत और ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल के सिलसिले में उनकी रहनुमाई मिलती है। उनकी मारूफ मशहूर किताब रद्दल मुख्तार सदियों तक अहले फतवा और उलमा के लिए अहम सरमाया है। हज़रत इमाम इब्ने आबदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल माहे रबीउस्सानी की 21 तारीख को हुआ था।

सामईन कराम, तारीख इस्लाम में कई ऐसी हस्तियां हैं जिनका जिक्र आते ही वफा, सदाकत, ईसार और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूरी दुनिया हमारे सामने आ जाती है। उन्हीं अजीमुल मर्तबत शख्सियात में खलीफा अव्वल, यार गार, महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सैदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम नुमाया होता है। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासादत माह रबीउस सानी की 22 तारीख को हुई थी। आप रहमतुल्लाह अली वो अजीम सहाबी थे जिन्होंने हर मोर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, अपनी जान, माल और वक्त को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का शुमार सबसे पहले ईमान लाने वाले जलीलुल कद्र सहाबाए करम में होता है। सामईन, आइए चंद आखिरी पैगामात लेते हैं। वाकवा से मोहतरमा शहनाज उन तमाम लोगों के लिए दुआएं तलब करती हैं जो फिलहाल बीमार हैं या किसी बीमारी में मुब्तला हैं। बुबासे से मोहतरमा हलीमा अपने भाई मरहूम हुसन के लिए इस साल सवाब की दरख्वास्त पेश करती हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपके भाई की मगफरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। मोहतरमा हलीमा ने कसीदा बुर्दा शरीफ की फरमाइश की है, मगर हम आगाज़ में ये कलाम चला चुके हैं। कोई बात नहीं, आइए गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ये मनकबत आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मुलायजा फरमाएं।

मौजूद सामईन, गौसे आज़म रहमतुल्लाही की इसी मनकबत के साथ हमारी आज की बज़्म अक़ीदत नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन

सुनहरे वाकयात का जिक्र किया जो इस महीने में पेश आए थे। बिलखुसूस माह रबीउस्सानी में हम पीराने पीर रोशन ज़मीर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाही का उर्स मुबारक एहतिशाम के साथ मनाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस महीने की फ्यूज़ व बरकात से माला माल फरमाए, आमीन। और सामईन, आज भी आपके भेजे हुए पैगामात का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व ताला सबकी नेक दुआओं को कबूल फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए और तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। इन्हीं दुआया कलिमात के साथ अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। दिल नादा को रुख्सत होना गवारा कहाँ, मगर यही रस्म दुनिया है। वादा है कि अगले हफ्ते फिर हाजिर खिदमत होंगे। आइए आखिर में सलातुस्सलाम का नजराना कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।

உள்ள கொய்யங்கு இது.

0: Yeah.
1: Number five.
2: படத்தின் பெயர் மனிதன் தெய்வ மகளம்.

0: Number one. Number one.
1: Album Talli Pogre.

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

好，听众朋友，接下来让我们一起来收听，外面的世界。好，下面有请大家一起。

0: मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से और मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के तआवुन से कुरान रीडिंग कंपटीशन यानी मुकाबला कुरान खानी की चार कामयाब प्रिलिमिनरीज के बाद अब वक्त है उसके ग्रैंड फिनाले का। जुम्मा 11 सितंबर 2026 इस्लामिक कल्चरल सेंटर पोटली से देखिए इसकी लाइव टेलीकास्ट एमबीसी 9 रात 8:30 बजे से। इस मुकाबले के 9 फाइनलिस्ट इसमें अपने खास अंदाज में तिलावत कलम पाक से मुशर्रफ होंगे।

0: इस खास मौके के लिए पाकिस्तान से तशरीफ लाए डॉक्टर कारी इकरामुल्ला मोहसिन दामत बरकतुमालिया मारूफ कारी कुरान के तिलावत से भी आप अपने ईमान को ताजगी बख्श सकेंगे। कुरान रीडिंग कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले जुम्मा 11 सितंबर रात 8:30 बजे एमबीसी 9 पर देखिए बराह रास्त नशरिया।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हम और आप

0: हम और आप
1: सभी का पूजा का प्यार भरा नमस्कार। घड़ी मिलाते चलिए, इस समय 4:60 हो चुके हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत है। हर रविवार की तरह हम कोई ना कोई नई विषय लेकर अवश्य आते हैं, और आज का जो विषय कुछ इस प्रकार है। कुछ चीज़ें पुरानी थी मगर बहुत खूबसूरत थी। याद है वो ज़माना जब घर में टेलीफोन एक ही होता था, परंतु साथ हमेशा परिवार का होता था। आज हर हाथ में मोबाइल है, फिर भी कभी कभी अपने ही लोगों से बात नहीं करते और वक्त भी नहीं। पहले मेहमान घर आते थे तो पूछा जाता था कि चाय पियेंगे। आज कभी कभी मेहमान आने से पहले ही मैसेज आ जाता है, कितनी देर के लिए आ रहे हो। पहले बच्चे शाम होते ही बाहर भागते थे, गली के खेल, साइकिल, क्रिकेट, चुपन चुपाई या फिर अपनों से मिलना। आज बच्चा घर में है मगर उसकी दुनिया एक स्क्रीन के अंदर है। पहले संडे का मतलब फैमिली होता था, एक टेबल, एक साथ खाना, थोड़ी सी नोक जोक और बहुत सारी बातें। आज डाइनिंग टेबल पर चार लोग बैठे होते हैं, लेकिन कभी कभी चारों की नजर चार अलग स्क्रीन पर होती है। और वो चिट्ठियां, एक कागज पर लिखे कुछ लफ्ज जिनका इंतजार दिनों तक होता था, आज मैसेज सेकंड्स में पहुंच जाता है। लेकिन उसमें वो इंतजार, वो जज्बा, वो एहसास कहां।

पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं होते थे, किसी के घर खुशी हो तो पूरी गली खुश, किसी के घर दुख हो तो पूरी गली साथ है। शायद जिंदगी तब परफेक्ट नहीं थी, परेशानियां तब भी थी, पैसे की कमी तब भी थी, लड़ाई झगड़े तब भी थी, लेकिन एक चीज शायद ज्यादा थी, अपनापन। और आज की हम और आप की बात इसी पर होंगे, क्या हमने प्रोग्रेस के साथ साथ कुछ खो दिया है, या वो पुरानी खूबसूरती आज भी हमारे पास है, बस हमने उसे थोड़ा सा वक्त देना छोड़ दिया है। तो आज एक काम कीजिए, मोबाइल थोड़ी देर साइड में रखे, घर में किसी बुजुर्ग के पास बैठे, माँ से पूछिए आपका दिन कैसा था, पापा से दो बातें कीजिए, किसी पुराने दोस्त को फ़ोन कीजिए और शायद आपको महसूस होगा कुछ चीज़ें पुरानी ज़रूर होती थी, लेकिन उनकी खूबसूरती कभी पुरानी नहीं होती। कुछ चीज़ें पुरानी थी मगर बहुत खूबसूरत थी। 4028085 पर आप सभी का इंतज़ार है।

0: चलिए लाइन पर एक श्रोता हैं, आइए उनसे मिलते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार नमस्कार पूजा जी।
0: नमस्कार धनी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: और धनी जी, आपको इस विषय पर
1: एक सेकंड दीजिए, रेडियो की आवाज आ रही है।
0: अच्छा जी, दीजिए। कुछ चीजें पुरानी थी मगर बहुत खूबसूरत थी।
1: धन्यवाद।
0: लाइन पर एक श्रोता है, धनी जी।
1: धन्यवाद धन्यवाद पूजा जी।
0: बुआशेरी से हैं, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
1: पूजा जी।
0: जी,
1: आपने अच्छा विषय रखा है, जो बीत रहा है आजकल, और बहुत बहुत ये बहुत दुख की बात है जो बीत रहा है, क्योंकि परिवार में आपस में बातें तक नहीं होती है। जहाँ घर पे और बड़े लोग भी, माता पिता भी, आज के जवान माता पिता तो उनके करीब चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पास में अपना मोबाइल है, रख देते हैं पास में। और बच्चे तो, बच्चे का तो न मत पूछिए, मोबाइल ही उनके दोस्त है। और मोबाइल का जो खतरा है, जानते हो, जब कोई चल रहा है, चाहे बस में चाहे रास्ते पर, एक तार है उसके कान में, एक तार है उसके कान में, वो अपना मोबाइल सुन रहा है। चाहे एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है और होता भी है कभी कभी, कि इस मोबाइल के कारण। अब बस में जाएंगे, आपको कोई, आपके पड़ोसी जो बैठा है आपके पास, वो आपके न देखेगा न ये उसके उसके मोबाइल को देखता है। तो मैं सोचता हूँ, मेरे विचार से ऐसा होता है क्या, ऐसा करने से बस में देखते ही रहना उसके मोबाइल में, तो क्या ये आँख का खतरा नहीं हो रहा है? आजकल जहाँ देखेंगे लोग लिनेट पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं। तो यही, ये इतना ही मुझे बोलना था, इतना ही काफी है, और कोई लोग बोलेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी।
1: जी धन्यवाद
0: आपका, हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते और शुभ संध्या आपको।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार जी। चलिए एक और श्रोता है, तीन और श्रोता हैं और सभी को मैं अवसर दूंगी। आप सभी जो हैं थोड़ा थोड़ा सा बात कीजिए। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार राधा जी।
2: जी धन्यवाद। मैं अभी निकल ही रही थी, सत्संग में जा रहे हैं, तो मैंने सोचा दो पल मैं आपसे जो विषय लिया है उस पर बोल दूं।
0: चलिए दो पल देने के लिए, दो पल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी।
2: धन्यवाद। और ये जो दो पल है ना, जिसे आपने कहा वो पुरानी बातें, वो चिट्ठियां, वो पल, वो सचमुच एक अलग एहसास होता था। बहनों की चिट्ठी आए, सहेलियां, वो कैसे कहते हो, मोबाइल तो है लेकिन मोबाइल वो कमी पूरी नहीं कर पाएगा। जो इंतजार होता था, जब वो डाकिया आता था दूर से साइकिल पर जाते हुए, पहले तो वो लोग साइकिल पर आते थे, तो सबको कुछ ना कुछ का इंतजार होता था, किसी न किसी की चिट्ठी आ रही है, कोई संदेश आ रहा है या भेज रहे हैं। वो एक अलग ही जमाना था। और आस पास के हम पड़ोसी थे, दिन में बैठकर चावल चुनना, चावल बीनना, बातें करना आपस में मिलकर, वो सब अब लगभग लुप्त ही हो गया है पूजा जी। वो तो नजर ही नहीं आता है, वो किसी के पास अब समय ही नहीं है। दो पल अपने पड़ोसी से उसका हाल चाल भी पूछ ली। अभी तो एक मृत्यु हो जाती है बगल में, तो हमें दो दिन के बाद पता चलता है कि वहां मृत्यु हुई थी, ऐसा समय आ गया है अभी। लेकिन जो पुरानी यादें होती है वो तो हमेशा दिल दिमाग में ताजा ही रहता है। और आपके इस प्रोग्राम के लिए मैं बहुत बहुत आपको आभार हूँ कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। धन्यवाद और शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या आपको भी राधा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार के लिए।
2: हाँ जी, बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद, शुभ संध्या आपको। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या कहना है। हेलो
3: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते विजय जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक ठीक, आप ठीक है ना?
0: मैं भी ठीक हूँ विजय जी। और आपका इस का विचार क्या है इस विषय पर?
3: हाँ हाँ, पहला जितना जहाँ सुना था, जितना जनता बचीला का बच्चा था, सब परिवार के बुधे प्रणाम। हाँ, अभी तक किसी बच्चे दुनिया लेमोन छोटा वर्बा, बहुत छोटा वर्बा, एक सेकंड में चल सांग लेती है लाफ और भारत। हवे नहीं, बाकी से तू बोला गाड़ी बहुत इतर है, सब कोई संगे, सब परिवार बैस के खाप से जिमा से दिन को वीकेंड बा, सब परिवार संगे रही। अभी तक संगे बैसे चार पांच जना था, वो कैसे नहीं बचाई, कैसे नहीं बचाई, पूरा पोता दिखा था, उन्हें दिखा था नहीं कि आगे के समय ना बहुत अच्छा लड़की से, जब टेलीफोन पहला लाम वाला गया टेलीफोन रहता है, इंतजार कर से आपको उठाई गई बच जाता। अभी तक टेलीफोन बच जाता, कोई उठाई नहीं खोजेला, तो घर में टेलीफोन बच जाकर देखा था कि बचा हुआ था, तो नहीं लेता सबको अपन पोता में हूँ सर।
0: मैं
3: आगे के जमाना के सेतु बोलो बहुत अच्छा रहा, सब परिवार भेट दी सर। अभी काम 10 जना हो घर में, बाकी 5 जना, बाकी 20 जना, कम 2 जना बा घर में, लोग काजो नहीं भवन काम से बचाइए, जहाँ लोग काजो मिलल तपन पोताब में हुआ, नहीं बोल पोताब नहीं अच्छा बा, पोताब अच्छा बा, पोताब अच्छा बटे सिनेमा हमने के परिवार के अपन में दूर कर दे होता थे। और अगाड़ी तक वो फामिल आके जब वो सेपरेट कर, तो फामिल गए तो अरे चले ले तू मान नादर का पकी का, अभी तब बुके से बोल रहा कर जा तू, अभी तब आवा थे सहा

0: আর গাড়ি দেখো ফামিলি আগে যেবে তখন সেপ্রিজ খেয়ে তো ফামিলি গেলে তো আরে চলে এলে তু মা নাদার কা পাকি কা আমি তো বকেছে বললে তো যা তুমি তো এই আমি আওয়াজ এসে হয় মে জিস হাই কে দিন হাই আজকে জিতনা তু বিচার লেকে আবেল আর মেসাম তোরা বইলা কে জিতনা বিচার লেকে আবেল আমি কে চাহলা সুচে কে নি কি আ খুলে কে শুনে কি তবে পগমাকে ভালে জানাব সামনে পূজা জি এ তার দিনে কে জিতনা জানাব সবকে বুঝাই প্রণাম আর কাল সে গণেশ চতুর্থী শুরু হতা থে সবকে বহুত অভিনন্দন রে তুই পূজা করি সে সব অপন ঘর মে গণেশ রখা তা শিওয়ালা মিস্টার গুরু পূজা করি সা আর আমি অপন দেশ খাতি পূজা করি সা দুনিয়া খাতি জামেনি কে দুঃখ সে সবসা সবকে মিল কে রই আপকে আপকে পরিবার খাতি ধন্যবাদ
1: বহুত বহুত ধন্যবাদ আপকো ভি और भी श्रोता है लाइन पर आप सभी से धैर्य की मांग है आइए एक और श्रोता है उनको सुनते हैं हेलो
2: हेलो नमस्कार पूजा जी
1: नमस्कार संगीता जी है ना
2: हाँ, हाँ। आज हमारा बर्थडे है
1: जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको
2: थैंक यू ताले को जोली गीत डाल दिया
1: आले तो हर नाम एगो गीत डाल देव
2: हाँ जाने ला तू कहाँ से ही सब जोड़ी जोड़ी बात सोच सोच के आके बोले बतिया ला अच्छा लगा
1: था तब बोला था वा ना कि आज तो हर जन्मदिन बात है ना तब मान ला कन्या राशि में एगो ए मान ला एगो एगो एगो टैलेंट छुपा बात है एगो कला तो वो पहचान जाला हाँ और जीवन में जब जब कुछ कुछ बीतेला तो हमनी अनुभव से ही हमनी ऐसे बतिया ला सा है ना तो हमरो में है ये
2: देखा अच्छा बात ले अब बोले अब बतियाई के हाँ देखा आगे पुराने के सब चीज बोलत हो ना पुराने का आगे के घर और अभी के बहुत डिफरेंस बा आगे के और घर और छोटा छोटा घर कितना कुकास रहल कितना अच्छा लगत रहल बहुत उमें छोटा लसाम एगो लवांग अब परिवार माता पिता लोग भी जाना रहल कैसे जिए बतिया
1: अपना प्यार रहल अपना
2: बड़ा प्यार रहल बहुत प्यार अब जे जाए ऐसे पास ही बता भैया हाँ आव सेज रही बैठ के बतिया है भैया अभी कहा भैया दीदी आके बैठ के बतिया तनी चाओ दे मामाओं के बड़ी प्यार से संजुल के और कोची रहल टप के लिपुक में रहल ओखली मुसर सील लोढ़ा जाता और कहाँ उस सब लोग के जब कोई लड़का लोग तो दिख ली ही नहीं बा
1: नहीं बाती
2: उस सब दिख रहे दिखते हैं साथ साथ नहीं बहुत दिख ली बहुत चीज भगवान के छह से आज हाँ तभी बोला था ये सब कहाँ दिख ले बा लड़का लोग तो जस्ती प्यार रहल से माँ प्रेम हमरा बुझाना हाँ भी इतना बड़ा बड़ा घर बना के खाली काम बा ढेर घरवन में बाप बहुत काम रहे तब नहीं रहल काम एगो छोटा ना क्विजिन रहल उमें पकेबा अथी मासुने सब रहल अच्छा लगत हल बहुत प्यार हल अच्छा लगत हल माता पिता सब कोई बहुत जोली से जिया तरी से अभी तो काम घर इतना बड़ा बड़ा बना दिले हो दिन भर काम करते रही ला सब
1: खत्म नहीं हुए ला घर के काम तो कबू खत्म नहीं हुए ला कबू
2: नहीं हुए ला आगे से मोहाली से हो जाता चल जाते कुछ करे बजे लुगा सी चल जाता लिसा हिंदी चल जापसा प्रवेश क्या होने पढ़े हिंदी उन्दी शिवाला चल जापसा हाँ बहुत मजे अच्छी रही सा मामा के घरे बहिन लोग रही सा ढेर ना सब एक गो काम करी तो हो जाए
1: तो जैसे बोला अभी हाली हाली पहले काम करत रहा तो हमारे देखो फूफू रहर हमरो ऐसे हाली हाली साली धोई हाली हाली काम करी तो जाके सिलाई सीखी हाई बनावट करी खोशे करी तो आज ओकर मदद करत कहीं हमरा सुनता कि नहीं परंतु बड़ी मेहनत कर ले बातें आज जोन जोन बात ओकर लगे तो मान लो ओकर मेहनत से ही और पहले के जो जमाना रहल पहले के जो समय रहल वो दूसरवे रहल अभी पहले अंगना में पीढ़ा डाल के अभी पड़ोसी अयन जा कहानी सुनायन जा है ना
2: सच्चे बोला था बैठ के सब आप सब कोई हाथ में लताब नहीं खाते लताब में भात नहीं हाथुए में लेके
1: हाथुए में
2: मामू रहे दीदी सब कोई हाथ में ले लेके अपन खयन सा प्ला में प्ला में लाशियत में कहाँ प्ला लाशियत में तो वो तो दूसरा रहा अच्छा लग रहा है बहुत लामू रहा प्यार रहा अब नहीं बाऊ सब वो
1: हाँ सच्चे के बोल रहा पहले तो लाशियत वा नहीं रहा थलिया रहा वो थलिया में खाता रहा
2: थलिया में खाता
1: रहा
2: बर्तन हम लुगा धोला रोस में हम बिले सिल में पिसी ला हम बिले खुशी रहे पिसो पिस मोदी नेक्स्ट न से पिसे।

0: तनी तनी सब घोष में कहा से करेला
1: हाँ
0: और ये अपन लुगा रोज रोज के धोईला।
1: पहले तो नदी रहल, नदी के
0: नदी नदी बड़ी
1: जाएगा।
0: मन करे जाए के
1: हाँ,
0: नदी
1: बड़ी मन रहल। हम तो गई नहीं, हम तो जा
0: कर नदी में
1: खेलत रही सा। वो हम नानी ऊपर दादी वो कपड़ा धोई लुगा उगा धोयन जा तो वो देख ब वो बैठ ब निमन से सीख ब कैसे लुगा धोवल जाला।
0: बहुत चीज सीख रही सा, बहुत चीज सीख रही सा से माँ आगे। हाँ
1: वो रहा
0: ढेर चीज सीख के अपन घर में आ रही सा। तेरी अपन घर में निमन से रही सा इतना दिन अकाउंट बनाने रही तो मैं मिशे तब जाके गुजर कर पैसा अकाउंटों में अभी चल रहा सा। हाँ से माँ इतना दिन अपन घर में रही ना, लड़का लोग बड़ा हो गया दादी बन गई ली सा
1: दिख रहा ना। हाँ
0: हाँ दादी उदी सब लड़का लोग सब बड़ा शादी हो गया बेटा पटो सब हो गया
1: सब हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी।
0: गीत डाल दिए हमार जोड़ी।
1: हाँ नहीं भुलाप नहीं भुलाप सच्चे गीत डाल दो। आली
0: आली आली धन्यवाद। शुभ संध्या आपको।
1: नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो पूजा जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी आपका शुभ नाम।
2: हम इंदिरा हैं।
1: इंदिरा जी आपका स्वागत है।
2: आता जोड़ी बैठे सबको अच्छा अच्छा बोली बात। आप पहले के जमाने में आजकल के जमाने में जैसे पहले के जमाने में कुछ नहीं बाकू मजे सब बानिश हो गया सबको मजे मजे। अभी के जमाने में कॉम्पिटिशन चला था भाई भाई से नहीं अच्छा बा जब हो भाई भाई देखा था ओकर मोटर गाड़ी तो हमरो मोटर गाड़ी हमरो काम धाम बा हमरो इतना पैसा हाँ ओकरा उतना तो हम भी दूसर काम जाते हैं रोजे करे हम भी मोटका पैसा जमे जोड़ी काम नहीं निमन सेफ बनब उसे मजे कॉम्पिटिशन के हो चला बा और मजे मान आदर नहीं बा सबको अपना अपने के जीवन में चलता उन लोग के ले गाड़ी। पहले के जमाने में हमने जब देखो जब सब माता जी पिताजी से जाके पूछब सर दादा से पुप्पू से चाचा से जब जाके तकारी पकाते जाके पुपू हाँ छोड़ा जाप से थकिर पुपू हाँ तकारी छोड़ा पूजा पाठ होता सबको सबको बैठ कर जाता आके गोर हाथ धो के पूजा पाठ कर तब खाना मिली। वो सब तक मजे सब बानी शुगर बाको मजे वो सब तक सब तक नहीं लगता आजकल के
1: नहीं लगता। और सच्चे के बोला आजकल कहाँ बाते कुजे कुजिन भाई बहन नहीं बा
2: नहीं बा ऊपर ऊपर कुजिन जब जाते मन शादी बियाह में तो सकिन तो अपन अपन हो बता
1: अपन अपन और वो लोग दिरालन से कबो तू आगे बढ़ जाइबा है ना वो लोग देरालन से कहीं तू आगे नहीं बढ़ जाइब तो हाइये कहतीन आजकल परिवार परिवार नहीं बाते पहले देखब हमनी के बर्जना लोग हाइये हमनी के बर्जना लोग के एगो सम्मान रहल घर में एकजुट के करत रहल हमनी के बर्जना हो
2: मौसी बोली आव सब मौसी के प्रणाम बैठब सब मौसी घाटू निकाली लता पर रखी ऐसे मौसी मौसा के प्रणाम हो यहाँ जब अब के जमाने में जब बोलब आव बहन आवता मौसा मौसा पुपा पुपू आवता से पक आई हम तो काम बा लसा मेहर के बन करके उतर नाप्त पन में बा और हो में बा ऐसे कैसे मेल मिला आपको कैसे को मजे फमिया बरी उ तो जामे नहीं बरी उ तो जब आए तो नौसा दी के लड़का पैका के मेल मिलाप में बा तो दूसर फा नहीं खुजाए के बोलियो कर तो लड़का लसा में घुस गल ओका अब तोरा जाके शरम पर गल लड़का खातिर रखो लड़का उ तो कहने का लसा में हेल उ तो अपन देव कर काका करता।
1: पहले पहले हमी के बजना लोग डांटे आओ बैठ बच्चियों
2: आओ बैठे प्रणाम कर ही ये
1: बैठे एक डाली के फूल हवा सा निमन से रही ऐसा है ये बोले
2: हाँ नहीं बुझे हो ऐसा ही से जब ले नहीं जाते आना पानी आने शरबत आना चाय सब आना ही या मौसी मौसा पुपा सबके मान आदर और अब नहीं चाहेला अब तो शादी ब्याह में जाते भाई भौजाई
1: सब अब
2: जब मुँह देखा था हो जब मुँह फिर लवटा हो ला जाके नमस्ते बोलता था उ तो नमस्ते नहीं करता
1: तो मुँह का है फेरी कुछ कर ले बाते ना है ये तो मुँह फेर ले वेला तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सच्चे के
2: ना तो भी तो न सकता तू आगे निकल गए ओकर संगे ऊ पीछे रगर
1: हाँ नहीं ऊ नहीं है कुछ कर ले बाते है ये नहीं सकता मुँह दिखाई है ना। हाँ कबो कबो अपन आत्मा हो कुछ कोसेला हाँ कुछ कर ले हाँ ये मुँह फेर दे वेला
2: भाई बहन में ऐसे हो जाता को बजे हाँ भाई बहन में ऐसे मन मुटाव नहीं होता इस पहले नहीं रहल
1: पहले नहीं रहल सच के
2: नहीं रहल उसे एकता रहल प्यार आदर सामान बड़ा आदमी के
1: हाँ आजकल
2: तो जो लाइक भी तोड़ा नहीं रिस्पेक्ट करता एक बात बोले बोले बता तो दिल दुखा जाता आजकल के लड़का लोग हाँ
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या आपको।
2: शुभ संध्या आप भी सबको एक गणेश चतुर्थी अभिनंदन मेरी तरफ
1: आपको भी गणपति की कृपा अच्छा। और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे चलिए
2: अच्छा, आपको भी
1: प्रणाम। और एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं। हेलो
3: तो

0: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते भाई दिला जी, कैसे हैं आप?
0: सब चल रहा है, ठीक से चल रहा है।
1: आज बहुत देरी से आल हो।
0: सब सब सबके अच्छी से सब चल रहा है, सबके हाँ। आशीर्वाद से चल रहा है। हाँ, कैसे एगो सूरजमुखी है, कितना एगो सुंदर फ्लेर है, फूल है, तो हमेशा इंसान के चाहना हंसमुखी रहेगी। हाँ, तो आगे के जितना चीज रहल सब असली रहल,
1: असली रहल,
0: लोगजिन रहल, हब्बी के ढेर नकली हो गल बा, समझ लो। और भाई आगे के तो टेलीफोन नहीं रहल ना, और भाई एगो में ऐसे कहते हैं गागाम्बेल, यही एवंते कर रहा टेलीफोन। हाँ, ट्रेडिशनल रहल उले पो, तो भाई जापोने लोग हब्बी जापोने कितना एगो इंटेलिजेंट आती है, तो ओकरा डेवलपे करके कितना चीज बनाई लन सर, हाई पोटा वो लोग ही बनाई लेबा। ओकर लावंताज है, डिसएडवांटेज है, और माला ढेर आवा चाहे बस ये अभी साइंटिस्ट लोग बोल ले बा, हम रिसर्च करके पढ़ ले है कि ढेर आदमी जो पोताप शरीर करता ओकरा ढेर कालीते माला धरता कौन से, और ढेर कालीते माला देता काहे, तो हमार फैमिली जैसा जापों कर हल तो है अच्छी कुमार जगह पोताप रिसाइकल अति से बनेला ना, तब ओकरा शरीर करत हुआ तो चक्का हुई बच्चू, समझ लो। तब का करबा एगो लामो हो गल बा चाहना सैली करे के पसीर कहूं इर्जेंस उसमें रही था चाहना सैली करे के, समझ लो। और टेक्नोलॉजी बहुत एवोल्यूए वाले मोन में ना, बहुत एवोल्यू हुआ था चाहना सोचमो करे के ना, तब ट्रेडिशनल आगे के नहीं सकता सैली करे ना, कैसे आगे है वो मक्का यू सब अच्छी कर रही सब है खासे कर रही सब हाउ रोसवा में हम भी तो मिक्सचर हो गल मानो एंचिमो अच्छी कर बताऊ तो खाजो के गाटो पीमो सब है उन्हें सब पका देता है, समझ लो। तो ये हमारे को छोटा संदेश है गणपति बाबा मोरिया सब कह के, और गणेश चतुर्थी सब कह के, और हम इस पे भी करते कि है परबुआ ढेर कोई निमन चती करी एगो साकरे है लेमोन भरी करे लन सब पहला महाराष्ट्र में हो रही, महाराष्ट्र से सगरो अभी अच्छी हो गल भाई, और बहुत लापे रही लिबोन में लापे रही, और जितना उपस्ताक रही था सब निकाली पसीर गणपति बाबा भगवान, वो जितना उपस्ताक बस सब निकालेला क्लियर करेला सीमा क्लियर करेला, और प्रोस्पेरिटी में रखेला आदमी के, और लाफोस देवेला हाई, और अच्छी देवेला लिस्प्री ढेर देवेला, और फ्रेंगा रहेला हेल्दी रहेला। हाँ, ये हमारे को छोटा संदेश है सब कोई के नमस्ते।
1: नमस्ते तोहरो और गणपति पप्पा मोरे आपको भी धन्यवाद।
2: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा।
3: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे। एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी। एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी। गणपति बाप्पा मोरिया।
4: हम और आप
1: कुछ चीजें पुरानी थी फिर भी बहुत खूबसूरत थी। आइए इस पर आपका जो क्या विचार है हमारे साथ साझा करें। लाइन पर रिक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
5: हेलो
1: जी, नमस्कार। वीना जी कैसी हैं आप?
5: बहुत ठीक हूँ, गणपति बापा की कृपा है
1: आपको भी। हाँ जी, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, अच्छे से नहीं आ रही।
5: नहीं दे रहा है अभी?
1: नहीं
5: अभी,
1: अभी आ रही है जी।
5: तो मैं यही बोल रही थी कि मैं भी यही आशा करती हूँ कि आप स्टूडियो में भली चंगी मुस्कुराती हुई बैठी है
1: धन्यवाद
5: सामने और हमसे बात कर रही है।
1: जी जी
5: धन्यवाद। जो जो बातें आप मैं

0: जोड़ देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मेरा फोन कभी कभी बीमार पड़ जाता है
1: जी,
0: तो इसलिए जो आप पुरानी बातें बोल रही है ना
1: जी,
0: तो मेरी बचपन की जो बहुत पुरानी यादें हैं, जो कि पहले मैं माता जी हूँ जाता में दादी नानी मौसी वो सब सतुआ पूछते थे, वो हर घर में लगभग एक घर छोटे घर में वो जाता होता था, आप पता है ना आपको जाता है छोटे में, तो उसमें सात चीजों को मिलाकर वो बनाया जाता है, वो तो अभी लुप्त ही हो गया है तो इसका स्वाद ही सवेरे जब हमारे बाप दादी हमारी माँ जब जाती थी पालन के लिए गौरे लाने पिताजी जाते थे चटनी करने इसलिए, तो वही उसको मतलब मिलाकर थोड़ी सी कोई नमक डालता है कोई चीनी डालता था, सात चीजों से मकई दाल ऐसे ऐसे सात चीजों से बनाया जाता था, भून कर उसको पीसा जाता था, बहुत अच्छी उसकी सुगंध होती थी और स्वाद भी और बहुत पौष्टिक होता था
1: जी।
0: वो जब खाते हैं ना तो आप मतलब दो तीन घंटे मतलब अगर सवेरे खाया है तो मतलब 12 बजे तक तो वो रहता ही रहता है।
1: आप सतवा या फिर कसार के बारे में बात कर रही हैं?
0: कसार कसार
1: कसार तो कुछ और है, सतवा हाँ
0: जन्म होता था हाँ तब वो बनाया
1: तब भी
0: जाता था।
1: ये सतवा है हाँ। आपकी आवाज फिर से खरखर आ रही है वीना जी।
0: जी जी ये अभी अभी अभी भी सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो
1: हेलो
0: हाँ सुनाई दे रहा है अभी?
1: हाँ जी बोलिए।
0: हाँ तो वही हम यही एक बहुत मेरी प्यारी चीज है जिसको मैं बहुत मिस करती हूँ बचपन की
1: हाँ।
0: और बचपन में हम सभी चाची दादी सब मिलकर वो नहर होता था, नदी तो नहीं होती थी जो कनाल बोलते थे, छोटी छोटी नदियाँ होती थी, हम कपड़े धोने जाते थे माँ के साथ
1: जी,
0: नहाना धोना दिन भर खेलना फिर कपड़े वहीं पे सुखा कर हम लाते थे और सभी एक साथ अपने अपने वो बकेट को सिर पर रख के जाते थे, पानी लेने भी ऐसे ही हम जाते थे नल में, ये सभी बहुत एक बचपन की बहुत एक सुनहरी यादें हैं जो कि वो लौट कर वो दिन कभी नहीं आएगा, बहुत अच्छा लगता था वो तो अभी सबसे अभी मोबाइल का जमाना हो गया टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया ये सब लुप्त हो रहा है, हम उसको बहुत मिस करते हैं, हम सोचते थे कि वो जमाना बहुत अच्छा था अभी के जमाने से, क्योंकि सब में सद्भावना थी प्रेम था दया था करुणा थी सबके मन में सबके लिए, लोगों के दुख में दुखी होते थे लोगों के सुख में सुखी होते, अभी तो सिर्फ चलन भाव अहंकार बहुत पैसा हो गया, ये पैसा आकर ना सबका मतलब दिमाग खराब कर दिया अभी के समय में, थोड़े पैसे थे लेकिन थोड़ा था लेकिन सभी खुश थे सभी प्रसन्न थे, सब में आपसी संबंध था और सभी बहुत प्रेम से रहते थे
1: जी,
0: कोई मन मुटाव नहीं था कोई किसी के मन में छल कपट भी नहीं था, जो था सब वो क्रिस्टल की तरह साफ था आर पार, अगर कोई भी बात हो तो ऐसी नहीं होती थी और झगड़ा लड़ाई तो बिल्कुल होती ही नहीं थी
1: जी,
0: अब तो देखते हैं ना हर घर के सामने सभी दीवार लगा देते हैं वो चारों तरफ से घेरा डाल देते हैं, पहले ये सब नहीं होता था
1: जी,
0: पहले तो आपको उसके यहाँ क्या पक रहा है वो पता चल जाएगा मेरे यहाँ क्या पक रहा है और किसी को किसी से कोई दिक्कत भी नहीं होती थी
1: जी,
0: वो तो भी क्या जमाना था पूजा जी, बस सोचने और याद करने ही की रह गई है और इससे ज्यादा मैं क्या बोले, लेकिन सतवा को मैं बहुत मिस करती हूँ, हमने बचपन में बहुत खाया है और अभी तो वो सब मिलता नहीं है और किसी में वो तो ग्राइंडर में अगर उसको पीसेंगे ना तो उसका स्वाद बराबर नहीं आएगा जैसे
1: जी, ये तो है। पर मेरे जो पुरानिया पकवान है उसमें सतवा मैंने सिखाया कैसे बनाते हैं, और अगर आप मिस कर रहे हैं तो तो आप देख सकती हैं और से घर पर भी बना सकते हैं, और शायद आजकल तो उसका मिक्सचर मिलता है
0: हाँ, मिक्सचर मिलता है लेकिन
1: स्वाद
0: तो
1: अलग है
0: ना, जब वो लोग गीत गागा कर वो भोजपुरी गीत
1: वो
0: गागा
1: अलग
0: कर
1: थी,
0: वो करते थे तो वो कोई दूसरा ही समा था
1: वो
0: नहीं
1: तो
0: बोलती भी नहीं, अभी तो आदमी उसको रिसाइकल करके कुछ भी कर सकता है अभी, लेकिन वो जो उसकी जो
1: असली स्वाद
0: है मौलिकता है वो तो नहीं रहेगी ना पूजा
1: जी जी, वो तो है वो तो है,
0: आपने मार छोंका पर भी खाया था वो भी तो मैं हमने बचपन में खाया है, माँ बहुत वो पका वो बनाती थी मार छोंका आदि डाल पीठा खिचड़ी लिट्टी ये सब हमने खाया हुआ है बचपन में, वो तो जमाने की बात है और उस समय कोई किसी बच्चे को ये सब खाने में कोई वो दिक्कत नहीं होता था, कोई बीमार भी नहीं पड़ता था
1: जी,
0: क्योंकि डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जाना

0: पड़ता था छोटी छोटी बातों के लिए। सब दवा दारू सब घर में ही हो जाता, आंगन में सभी के ये जड़ी बूटी हुआ करता था। अभी के समय में तो सब कुछ डॉक्टर के यहाँ भागो, या तो सारा जो पैसा मिल रहा है सारा फार्मासी खाता है, या तो डॉक्टर प्राइवेट खाता है, या तो अस्पताल। समय ऐसा हो गया कुछ नहीं कर सकते ना,
1: कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी,
0: बहुत धन्यवाद।
1: और आपको शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या और गणपति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपको भी और एमबीसी के सभी स्टाफ के लिए।
1: आप पर भी गणपति जी की कृपा बनी रहे, बस
0: यही कृपा बरसती रहे और दिन दुनी चौगुनी आप उन्नति करती रहे, आपके सारे विघ्न बाधा जो आपके मार्ग में वो सभी हट जाएं, आप खुशहाल जीवन जिए, इसी तरह अच्छी तरह से अपना काम करती रहे और हमसे बातें करती रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी आपके इस आशीर्वाद के लिए, शुभ संध्या आपको।
0: नमस्कार।
1: आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनसे हम मिलते हैं। आशा जी नमस्ते।
2: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ पूजा जी, और हमेशा की तरह सभी बुजुर्गों को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: आपको भी।
2: तो आपके विषय अनुसार मैं जो शब्द ये जो

0: लोग हैं जो अपने पुरानी चीज़ों को संजो कर रखते हैं, जैसे कि पुरानी कोई किताब हो, पुरानी डायरी हो, फर्नीचर हो या कोई पुरानी कोई बर्तन हो। पर पुराने रिश्तों को संजो कर क्यों नहीं रखते, जैसे कि नाना नानी, दादा दादी, वृद्ध माता पिता, उनके बताए हुए सीख, उनकी दी हुई शिक्षा कभी पुराने नहीं होते
1: जी।
0: ये वो अतीत के मोती है जो सोने की तरह खड़ा रहता है, खड़ा होता है। पहले के जमाने में पैसा कम था पर रिश्ते ज्यादा थे, अभी के दौर में पैसे ज्यादा हैं, रिश्ते कम हैं। सुख सुविधाएं कम थी, लोग आधे रोटी खाकर भी चैन की नींद सोते थे, प्यार से गुजारा करते थे। अब भी भर पेट भोजन करने के बाद भी सोने के पलंग क्यों न हो, नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि रिश्ते में जो दरारें आती हैं, जो कसक है, जो क्लेश है, वो आपको सोने नहीं देती। तो इसकी वजह यही है, क्योंकि जब हमारे जो पहले के ज़माने थे, जो पुराने दौर के जो हमारे अभी भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो अभी भी हमें यही सिखाते हैं कि पहले के ज़माने की तरह जियो। भले पहले सब कुछ की कमी थी, पर हम एक छत के नीचे, भले हम जमीन पर बैठ कर ही क्यों न हो, प्यार से खाना खाते थे। अभी डाइनिंग टेबल पर भी बैठ कर चुप्पी से लगी रहती है, एक सन्नाटा सा छाया होता है। मन में कोई बात होती है तो सरसते हैं कि अपने अपनों के साथ कैसे कहें, क्योंकि अपनों को तो हमारे लिए वक्त ही नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, दूर देश में बैठे मोबाइल से आप अपने दूर में बैठे लोगों से बात कर रहे हो, पर एक कमरे से दूसरे कमरे में जो आपका अपना है वो गुमसुम बैठा है, आप उनसे जाकर अपना दिल का हाल भी नहीं बोल। यही सब अंतर है पुरानी चीज़ों में और अभी के दिनों में। पुराने चीज़ कभी पुराने नहीं होते पूजा जी। कहते हैं ना, पुराने जो होते हैं वो 100 दिन के होते हैं, जो नए चीज़ें होते हैं वो बस 9 दिन के होते हैं। ये हमारे जो बुजुर्ग के सिखाए हुए ये जो बात होती है ना, ये मेरी माता जी अक्सर मुझसे कहती है कि पुराने कभी नए चीज़ वो खराब हो भी जाते हैं, पर पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो कभी खराब नहीं होती। इसे मैं आप सभी सुनने वालों से आग्रह करती हूँ, आपके यहाँ आपके वृद्ध नाना नानी, दादा दादी या माता पिता हैं, आप उनके पास जाकर पहले के जो जमाने के कैसे हम रिश्तों को संजो कर रखते थे, किस प्रकार से हम प्यार से एक ही थाली में बैठ कर सब माँ सबको एक कवर कवर खिलाकर सबको बच्चों का किस तरह से प्यार से खिलाते थे, उन सब बातों को सुनकर सीख लेकर इस समय के युग में अगर हम जीना सीखेंगे ना, तो जीवन स्वच्छ से सुंदर हो जाएगी पिता जी। बस
1: तो
0: यही कहूंगी, ऑल इज गुड। और रखने से पहले मैं आप सभी भक्तों को कहूंगी गणपति उत्सव महाव्रत की अधिक अधिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
1: आपको भी गणपति पप्पा मोरिया, और आप पर और आपके पूरे परिवार पर गणपति जी की कृपा बनी रहे, बस यही आशा है। और आप हमेशा यूं ही हम और आप कार्यक्रम में भाग लेती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद पूजा जी, शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते जी। आपका शुभ नाम?
1: अमृता हूँ,
0: अमृता जी
1: अमृता।
0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं कुडो से, कुडो से।
0: वो तो दो से। अच्छा, तो आप बताइए आपका क्या कहना है
1: हाँ
0: अमृता जी।
1: हाँ प्रोग्राम अच्छा रख ली, वह अच्छा
0: बहुत
1: लगा
0: धन्यवाद।
1: था सुने के। सहरसा प्रोग्राम हम सुनी ला निमन से। बोला
0: धन्यवाद।
1: था ना, पहले के जमाने के अरबी के गीत, जमीन और आसमान के।

0: हाँ
1: हो गए। पहले के जमाना भले गरीब रह आदमी सब कोई मिलजुल के जिए, प्यार सब में प्यार रहा। अभी मैं बाजार अभी अभी जमीन में नहीं बा, आदमी आसमान में बा ना। और जन हमें के प्यार मिले, हमें अभी याद कर सब पहले के जमाना में हमें सब जॉइंट फैमिली रहा। अभी तो न माँ बाप लौकेला न भाई बहन कोई नहीं लौकेला। कितना तोहर फैम बात बेटा पतो लड़का बा, सेलमा हमर जन फैमिली रहल नहीं बा ना बेटा हाउ फैमिली वहाँ तो हमें के मन रोबे ला लोग खातिर। हमें उदास हो जाएला सब सोचिला सब तक। अब भी हमें के सब नवा पीढ़ी बा, सेलमा हमने के जन हमें के बीतल नहीं बा। बहुत हमें के परेला सोचे के याद करे के उलो के खाली आंसू आवे आँख में। पहले के जमाना बोला तो प्यार है तो हमें के बोले ला ना कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। हाँ ये बतवा है क्या नवा में है। हाँ जमाना के जन रहल जन प्यार रहल इंतजार रहल है सब सब सब खत्म हो गल। सब खाली यादें रह गल ना, खाली यादगार कुछ नहीं रहा।
0: ये तो है।
1: हाँ तू अच्छा प्रोग्राम आने ला, हमारा अच्छा लगे ला।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
1: बहुत धन्यवाद तोरो।
0: और आपको शुभ संध्या।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो
2: हेलो
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
3: ठीक है।
0: आपका स्वागत है और आपका क्या कहना है? एक और श्रोता है लाइन पर, उनसे जो है कमला जी आपको जो है धैर्य की मांग है। अच्छा जी बोलिए।
3: अच्छा मैं सभी श्रोताओं से मांग करता हूँ कि विषय पर बोलें, विषय के अलावा कुछ न बोलें और संक्षेप गागर में सागर भरें ताकि सभी को मौका मिले बोलने को।
0: चलिए
3: मेरा विचार ये है कि पहले के जमाना क्या जमाना था। सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, खाते थे, पीते थे, काम करते थे एक साथ। और सभी जितने हमारे परिवार है आते जाते थे, जो कुछ था रुखा सुखा खाते थे, प्यार से रहते थे। इतनी बड़ी बात है।
0: हाँ।
3: दूसरी बात है उस समय में हम अपने माता पिता के साथ रहते थे, जो कुछ पकता था वही हम खाते थे और खाने से पहले बैठका से आकर हाथ पैर सब धोकर संध्या करते थे, सब मिलकर चटाई पर बैठकर संध्या करते थे और शुद्ध भोजन करते थे, इसमें इधर उधर की बात नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम उस जमाने में कितने जस्ट मान लिया जाए किसी वेद पुराण गीता रामायण है, आज तक दूसरा नहीं लिखा गया है, वही ग्रंथ जो है आज तक लोग पढ़ते हैं
0: जी।
3: और मेरा कहना ये है कि आज की जो फिल्में हैं, जो मोबाइल है, यही सब बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, बड़ों को बिगाड़ रहे हैं, स्त्रियों को बिगाड़ रहे हैं। जो सीरियल चलता है उसमें क्या सिखाया जाता है, वही देख देख कर सब जमाना जो है एकदम बिगड़ते जा रहे हैं। मैं मांग करूंगा कि अपने बच्चों को अच्छे अच्छे फिल्में दिखाएं, जैसे मौजे इंडिया, घर संसार, गृहस्थी इत्यादि। आज एक फिल्म चल रही है अभी हनुमान अंश, वो अपने बच्चों को लेकर जाकर दिखाएं, जो भारत में और पूरी संसार में पूरा संसार में जो हलचल मचा दिया है, जो ज्ञान की है, ज्ञान है उसमें, और ऐसे फिल्में देखें। और अंत में मैं लंबा चौड़ा न करके फिजूल समय न गवा करके मैं सभी को ईश्वर जो है गणेश का

0: अर्थ अर्थ ही होता है गणों का ईश। सारे संसार का ईश्वर गणेश है। लंबोदर सबसे लंबा मोटा ऊंचा हाथी है, इसीलिए उसको लंबोदर करते हैं। और फिर गणपति, गणों के पति, सारे संसार के पति लेमेया, वो गणेश है। और सभी ईश्वर परमपिता परमात्मा सभी को बल बुद्धि शक्ति दें और अच्छी तरह से मिलजुल कर गणपति बाबा का पर्व मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको भी और शुभ संध्या आपको।
0: धन्यवाद।
1: आइए लाइन पर एक और श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो हेलो।
2: नमस्ते पूजा जी। नमस्ते पूजा
1: नमस्ते
2: जी।
1: कमला जी, कैसी हैं आप? बड़े दिनों के बाद आप आई
2: बिल्कुल
1: हैं।
2: हाँ, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलेगा ना पूजा जी।
1: हाँ जी,
2: कभी कभी परिवार लेकर के देखे के जाके हो रहे जाके सोचे हो के। हाँ, तो आज मौका मिला तो सुधरी तोहर से जुगो बात कर ली ना।
1: चलो बोलो।
2: हाँ, प्रोग्राम तो पुराने जमाने के याद के बारे में रख लियो ना, चीजों को कैसे
1: पुरानी
2: संजो
1: थी
2: के रखी
1: फिर भी।
2: अपना।
1: हाँ नहीं, पुरानी थी फिर भी खूबसूरत थी।
2: हाँ,
1: हाँ
2: खूबसूरत थी, हम दिल से लगा के रखते हैं ना।
1: हाँ
2: और ये पूजा के सबको शुभकामनाएं बताई।
1: हाँ
2: हाँ, और पूजा के एक बात बोली तोहर से,
1: हाँ
2: हमारे
1: बोला।
2: बात के जवाब दिया।
1: हाँ
2: जब परिवार में एगो मृत्यु होवेला
1: हाँ
2: तो एगो शोक मनाएला सर,
1: हाँ
2: एगो शोक मनाएला सर। थोड़े दिन के बाद पता नहीं हई फेटवा अबरी बारिश कर ली नहीं कर ली सर, आवत बारिश फिर कोनो एगो समस्या चला, कोई के और बुजुर्ग के परिवार में
1: हाँ
2: एगो मृत्यु हो गल, एगो हई हो गल।
1: हाँ
2: तो कैसे ऐसी बात पछताई के हो जाला कि
1: हाँ
2: इस साल नहीं कर ली सर, वो साल नहीं कर ली सर। तो हम के एगो फार्मी हमने के फार्मी में एक एगो एगो हमारे एगो देवर के ओकर मृत्यु हो गया रहा, देहांत हो गया रहा। तो हम बोली सा एगो जीजू कैसे हो जाए। तो हम भी बोली सा अब हमने पूजा उजा होल। तो हम भी बोली सा जब समय दे कुछ नहीं चढ़ाओ अब सर, मे से माँ जब सब पूजवा आशिस्ते करे। हमारे बात से सहमत हो ना, हमारे
1: हाँ
2: बात से सहमत
1: हाँ
2: होते का बोलते ना। तो
1: हाँ
2: हम भी बोली सा जब सब पूजा में लड़का लोग भाग ले बता गणपति पूजा में, फिर माँ फिर उन्हें चढ़ावते सर प्रसाद में चढ़ावते सर, जिस जाके पूजा आशिस्ते कर सर। तो हवे हम बोला था जे की ढेर कोई बात करे जाना तो हर पीठ पीछे बोले ला हाँ हई होल बा मिट्टी होल बा हई होल बा, चुप करे जाते हैं सर, हई करे जाते हैं सर पूजा में। तो दूर रह सर, दूर से पूजा के आशिस्ते करब सर, देखब सर। हाँ, और तोहर विषय पर बात कर ला। जो तू बोला पुराने जमाने के जब मामा रहल, मामा रहल तो हमारे लगे आई, तब वो आई तो बड़ी चूल्हा बारे के हाउ पोंडामू के चटनी बनाई जरा के चूल्हा में, आर बैगन भूज के आग में जरावी। आर कैसे अभी हाउ चचा बोलन जो उकर हर एगो शब्द में एगो सच्चाई एगो मिठास अच्छा से बचेलन। आर सच हो उसे परिवार में एक साथ कैसे चटाई बिछा के दादा दादी नाना नानी सब कोई एक जगह बैठ के सब कोई राकोटे करी कहानी हमी के सिखाई। हमार बहुत छोट बचपन के ढेर हमरा अथी जुड़ल बा, हमार दादा दादी हमार पिताजी हमार माँ जो मानिए हमी के सिखैले हवन कुमार जे हवे हमियो हम अपन लड़का के सिखाई ला
1: संस्कारवा
2: सर।
1: रहे जाला।
2: हाँ, संस्कार वा रहेला। हाँ, आर तोहरा बोला था तोहर फोटो खूब जोली जोली आवता टिकटॉक में खूब जोली
1: धन्यवाद।
2: बहुत पसंद हाँ हमके। हाँ, कोनो कोनो तो हम सेव करके रख लाई निशानी के तौर पर। हाँ,
1: बहुत बहुत
2: आज
1: धन्यवाद।
2: तोहरा, हाँ आज तोहरा शुभ संध्या बोला था,
1: शुभ संध्या
2: धन्यवाद
1: आपको भी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: और
2: हाँ
1: भी श्रोता हैं लाइन पर,
2: हाँ
1: आइए उन्हें।
2: पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं बताई सबकी,
1: धन्यवाद। तोरो भी
2: धन्यवाद
1: धन्यवाद। एक और श्रोता है
2: धन्यवाद।
1: लाइन पर, आइए उनसे हम मिलते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
3: शुभ नमस्कार पूजा जी।
1: शुभ नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप?
3: देखिए ऊपर वाला की कृपा है
1: और रहनी चाहिए, क्यों नहीं जी।
3: तो, और इसीलिए मैं चंगा हूं और आपसे बात करने का इरादा रखता हूँ।
1: आप हैं तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं नवीन जी।
3: नहीं जी देखिए, लेकिन आपने नवीन कहा ना, तो मैं हमेशा नवीन रहने की बहुत कोशिश करता हूँ।
1: जी
3: मैं
1: जी
3: पुराना नहीं होना चाहता हूँ।
1: अच्छा
3: और
1: जी।
3: मेरा नाम है नवीन, और जो हमारे गुरु है उन्होंने मुझे एक नाम दिया था स्वामी।

0: 불안한다.
1: 불안.
0: 원래 못 벨리세. 아차. 부자지.
1: 지.
0: 오라기 버니 세 벨리. 아까 कुछ देर से बोल रहा हूं.
1: 지.
0: 매 찾았다. 아프고 जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.
1: बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: नहीं।
1: आप भूले नहीं और आप ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझे ये जो है शुभकामनाएं दी. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी.
0: नहीं, मैं ख्याल करता हूँ, मैं जी याद रहती है
1: जी.
0: अच्छा पूजा जी,
1: बोलिए.
0: चले विषय पे
1: जी.
0: ये आपका विषय जो है ना
1: जी,
0: आपकी बात
1: ही जी,
0: उनमें एक बहुत बहुत गहरी सच्चाई है
1: जी,
0: और दर्द भी है
1: जी.
0: हम बहुत दुखी होते हैं ये सब जान करके. कुछ नहीं किया जा सकता. देखिए आज के इंसान में क्या दिखते हैं ज्यादातर, चमक दमक. और इसके पीछे भागते भागते अपने आप को खो देते हैं. और वे सबसे अनमोल चीज यानी प्रेम मित्रता इत्यादि सबसे वंचित हो जाते हैं. आज के दौर में सचमुच लोगों के बीच से वह पुराना संयम, संयम की बात कहे तो आज इसका महत्व है ही नहीं. अनुशासन और मिठापन ये सब कम होता हो गया है और होता जा रहा है
1: जी.
0: मैं कहूंगा आपसे सभी लोग इसका अनुभव तो करते हैं, लेकिन कुछ सुधार नहीं ला सकते क्योंकि इस संसार को कोई नहीं बदल सकता
1: जी.
0: अगर कुछ बदलना है तो स्वयं को बदलो, खुद को बदलो, समाज या दुनिया अपने आप बदल जाएगा. प्रयास करो, अंतर मन में देखो. सभी लोग बाहर जाना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना नहीं चाहते
1: जी.
0: इसीलिए ये सब हो रहा है. देखिए बुजा जी, और जोड़ूंगा, ये बड़ी वेग से दुनिया आगे बढ़ रही है. बड़ी वेग से, और भागदौड़ की दुनिया में और धन दौलत के पीछे भागने से तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है. तो इसके कारण अच्छी बात होगी कहाँ से? नहीं होगी, नहीं होती है. जब देखते हैं तो चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता था केवल. देखिए बच्चे भी जब माँ बाप को देखते हैं, समीप आते या कुछ बोलते हैं, बड़े चिड़चिड़ापन से बात करते हैं. क्या है, क्या बोलती हो, क्या बोलते हो. देखिए आज अब मैंने अपात देना भी बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल के बच्चे भी अब ज्यादातर वे लोग बहुत लोग बातें ही सुनने नहीं चाहते हैं. जब कुछ समझा ले तो वो लोग पैर से ले रहे हैं. पैर उसको मारता है, वो उसको मारती है इत्यादि. तो मैंने सोचा अब बन बड़े बड़े बच्चे छोटे छोटे बच्चों को दे रहे. वो भी आजकल तीसरी ये कक्षा बच्ची या बच्चे सब बात नहीं कर सकते हैं. लोग बहुत बात बोलते, बहुत कुछ जानते हैं. पहले के जमाने में मैं कहूंगा आपसे, लोगों में सहन शक्ति थी
1: जी,
0: चाहे चाहे और चाचा चाची इत्यादि बड़े घर के बड़े बुजुर्गों से. लेकिन अब देखा जा रहा है कि धैर्य भी नहीं है किसी के पास. आज कोई भी किसी को समझ नहीं पा रहा है. सभी बोलना चाहते हैं, सुनने के लिए कोई है नहीं. पहले मित्रता थी, आज क्या है? आज अकेलापन.
1: अकेलापन, हाँ
0: अकेलापन है आज. जो कुछ पाने की कोशिश करते हैं अच्छी बात है, उन्नति प्रगति करनी चाहिए. इस पर रोक नहीं डालने चाहिए, पर ऐसा न करें कि पछतावा के सिवाय कुछ नहीं रह जाए. देखिए जब हम समाचारों में देखते हैं या देश विदेश की समाज जब हम देखते हैं, बहुत प्रगति हुई है, बहुत

0: बड़े बड़े घर हम भी यार अपने देश में बना रहे हैं, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल, पर यह भी देखते हैं कि छन भनगूर में ये सब महल गिर जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी हाल ही में हुआ है, ये सब तार बह जाते हैं, कुछ नहीं रह जाती है। और ये जो घर में जो फोटो है ये सब टंगे रह जाते हैं इसी में और बह जाते हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि प्रगति मत करो, लेकिन फिर भी हमको चाहिए कि हम अपनी बुद्धि से काम लें। और हमें जानते हो ये सब चाहिए, अगर हम अपने मन की शांति चाहते हैं और हम इन सब से बचना चाहते हैं तो चाहिए कि हम अपने अंदर झांके, अपने अंदर देखें और किसी से किसी इन लुप्त भावनाएं जो अभी आपने अपने शुरुआत में कहा, तो इन सब की आशा न रखें। इन सब की आशा रखने से ये हमारा समय बर्बाद है, व्यर्थ की बात,
1: अपेक्षा नहीं करना
0: अपेक्षा,
1: चाहिए।
0: अपेक्षा, हाँ। धन्यवाद, यही सब मैं पाना चाहता था।
1: जी
0: धन्यवाद जी,
1: कभी आप मेरी सहायता करते हैं, कभी मैं ये तो है ना, ज्ञान का बढ़ते हैं। ये तो सच है नवीन जी, जब आप किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं तो दिल नहीं दुखता, दर्द नहीं होता और कुछ भी नहीं होता। आप एक साधारण जीवन जीत लेते हैं कि हाँ, मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, मैं सिर्फ स्वयं के लिए हूँ और स्वयं मैं अकेले आई थी, अकेले ही जाऊँगी। ये अगर हम धारणा लेकर चलेंगे तो किसी से कुछ भी उम्मीद या फिर अपेक्षा नहीं करेंगे।
0: देखिए, सहायता चाहिए तो मैं है,
1: वो है जी,
0: जैसे आप ही बोलते हैं।
1: हाँ,
0: ये जो क्या गरम गरम क्या पकाते हैं,
1: गर्मा गरम नाश्ता जी,
0: हमेशा बोलते हैं
1: जी,
0: तो मैं तैयार करूंगा
1: जी,
0: मुझे याद दिलाइएगा।
1: हाँ,
0: और मुझे याद तो है
1: जी।
0: और इससे पहले एक बात बोलना चाहता था, किसी की अपेक्षा न करें। अंग्रेजी मैंने कहीं पर पढ़ा है, नो अपॉइंटमेंट नो डिसअपॉइंटमेंट
1: जी।
0: तो अगर हमने अपॉइंटमेंट दिया है किसी को वादा करिए कि हम मिलेंगे, तो वो चाहिए कि हम तूफान में भी चले जाए।
1: तूफानी
0: गीत है, बरसा बरसत तो कैसे पहुंचाओ संदेश, एक जगह गावे ऐसे है।
1: और हिंदी में भी एक गीत है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। पर ये जो आपने अभी हाल में कहा है कि आप हमेशा तत्पर रहते हैं और ये नहीं कि कोई खास दिन हो तभी आप फोन करते हैं, नहीं, आप हमें मैसेज भेजते हैं हर हफ्ते, चाहे आप बीमार हो या कुछ भी नहीं, पर यही उसे कहते हैं सच्चा रिश्ता, जो हर वक्त याद करे उसी को हम फरिश्ते कहते हैं।
0: जानते हो,
1: जी,
0: अगर हम दिखेंगे
1: जी,
0: हर वक्त एक मुश्किल घर याद,
1: हर वक्त
0: हम एक दुखद बात हो जाती है
1: जी।
0: तो चाहिए कि हम इन सब की का सामना करें
1: जी,
0: और हर चीज का के लिए समय निकालें। अगर मन में हमने ऐसा ठान लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं,
1: बहुत कुछ
0: कर सकते हैं। मैं अभी आजकल इन दिनों से मुश्किल घड़ी में हूँ, लेकिन मैं इस ये गरम गरम के
1: नाश्ता
0: के लिए मैं निकलता हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: और केवल आप ही नहीं, वीना जी हैं, आशा जी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं याद भी करते हैं इतने प्यार देने के लिए, और आते हैं और हर रविवार को आप लोग फ़ोन करते हैं, अपना जो विचार है उसका जो है उसका आदान प्रदान होता है यहाँ पर। और मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मैं जो भी विषय लेकर आती हूँ नवीन जी, चाहे वो आप हो, वीना जी हो, श्यामा जी हो, आशा जी हो, जो भी हो, चाहे जब भी वो आते हैं तो मान लीजिए ढेर सारा प्यार और साथ साथ ज्ञान भी लेकर आते हैं। मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ इस कार्यक्रम से।
0: नहीं, ऐसा है, देखिए एक बात, रविवार के दिन हम सत्संग करने जाते हैं, लेकिन मैं जल्दी से आ करके रेडियो को लगा करके मैं आपको सुनता हूँ, तब बात करता हूँ देरी से।
1: बहुत
0: धन्यवाद, करेंगे बात तो बहुत हो जाएगी, फिर से मिलेंगे छोटी सी दुनिया में। शुभ संध्या,
1: शुभ
0: नमस्कार,
1: शुभ नमस्कार आपको भी, और गणपति पापा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। नमस्ते,
0: बहुत धन्यवाद, धन्यवाद,
1: धन्यवाद।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

तो चलिए इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ, और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आपके विचार भी नेक और दिल भी नेक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्यार से आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जिन जिन का नाम मैंने लिया नहीं फिर भी क्षमा प्रार्थी हूँ, पर सभी बहुत प्यारे हैं मेरे लिए। और मैं सभी को अवसर देती हूँ, भले ही लंबा चौड़ा कुछ भी बोलते हैं फिर भी सभी को अवसर देना चाहिए, क्योंकि सभी का अपना अपना एक विचार होता है, अपना अपना एक खुशी मिलती है ना कि रेडियो पर हम भी अपना जो विचार बांट रहे हैं, सभी से बात कर रहे हैं, दोस्ती हो जाती है, परिवार मिल जाता है, आवाज़ से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। तो प्यार से रहिए और सभी को प्यार दीजिए, मेरा बस यही मानना है। जियो और जीने दो। चलिए अब हमनी बरहब सा तोहार पसंद कार्यक्रम की ओर, जहाँ पर ही भोजपुरी के गीत चली थोड़े पसंद के।

नमस्ते और ई प्रणाम। 5:06 हो गल बातें और तोहार पसंद कार्यक्रम में सब कोई के दिल से हृदय से स्वागत करत हैं जा। तो चला आज जन है संगीता जी अपन जन्मदिन मनावत हवन जा, और जे कोई अपना जन्मदिन मनावत हवन जा आज जा सब कोई के बोलब जा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे एमबीसी टीम के दिने से स्वस्थ रहिया, सुरक्षित रहिया और हमेशा मुस्कुराते रहिया, और हमने संगे चाहे आज जोड़े के हमेशा की तरह। संगीता जी गीतवा तोहर खातिर।

हमू तो राह देखत है 4028085 पर सगबत जा अपन पसंद के गीत जनहा हमनी तक पहुँचावे। तो अभी जनहा गीत के मांग कर ले बाते विशेषर जी विष्णुदेव विशेषर जी वो गाँवे से हमनी के सुना थवन और बोला थवन कि सबसे मोल हा बड़ा अनमोल जनहा वो हा माँ बाप की सेवा। तो चला ये गीतवा के सुने के चाहत हवन जा और तोहरो चाहत हवा गो गीत सुने के तो सकबा जा हमनी के मिसाजो भेजे 2 51 00 05 पर नहीं तो 4028085 पर 4285 पर। तो चला है गीतवा हमने सुनी रहा सा गीता गजाधर जी के गावल गीता।

त्रियोले से हमने के सुना था वन अनीता जी पर बेटी हवन पूजा दामाद वेद और लड़का लोग बातेसिया और कल सब परिवार खातिर गीत की मांग कर ले बातें रंभा राम तोहर के गावल गीत रेशम के साड़ी तो बड़ी रेशम के साड़ी पहने ला ये तो गीतवा मंगले बातें कहूँ जात बामू को ये मांगा चाहे गीतवा तो चला है गीतवा हमने सुनी ना सा अनीता जी के देने से और सब परिवार रह के खातिर रा और साथ में बातें कमला दीनू जी और सब परिवार रा प्यारी आरोही चित्रा जी हवन जा मौदाल ब्यास से तो चला है गीतवा हमने सुनी ना सा

वैसे और ओकर पति रोहित तीन बेटे और ओकर बेटा बाते तीन और साथ में बाते आदित्य आरव और छोटी जानवी खातिर।

मीरा मोहन जी के गावल गीत मदालबेया से लंदन से, और ओकर पूरे परिवार जो लंदन के हवन जा ओकर सब परिवार खातिर है गीतवा के मांग कर ले बाते इंदिरा लोटन जी, और हमनी के पूरे एमबीसी टीम के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी। तो चला है गीतवा तोहर खातर।

तो चले को जन्मदिन के गीत हमने चलावा थे जा, खास तौर पर रल इकराम जी अपन पत्नी देवी जी खातिर है गीतवा के मांग कर ले बातें। और ये गीत खास तौर पर रुककर जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएँ देवा था अंजा। और साथ में बातें स्वीती जी गौबुआ से और अपन पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएँ देवा था अंजा अपन पूरे परिवार के देने से। तो चला है गीतवा खास तौर पर लेकराम जी और स्वीती जी खातिर।

तो चला है गीतवा खास तौर पर आरोही खातिर कर दादी शैला जी गौनगवे सुदेश से हमनी के याद कर लंजा चला है गीतवा ओकरो खातिर रा और जे कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा सब कोई पूरे एमबीसी टीम देने से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

तो चले है गीत खासतौर पर महीन जी पालमा से हवन जा और ये गीत खासतौर पर दीदी मानना और श्यामा रघुनंदन जी वीना रामफुल जी शोभा जी हवन वाकवा से देवी जी हवन हाईलैंड।

तो चला है यो गीतवा हमने चलावत हैं जा गायत्री जी नुवेल फौसे बेटे अजय और रुकर सब परिवार खातिर रा। तो चला एक रिवे संगी हमने तो हर प्रसिद्ध कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं।

संगे हमनी तोहार पसीन कार्यक्रम के अंत तक चलाल हैं जा। सब कोई के बोल अब जा प्रणाम, स्वस्थ रहिया, सुरक्षित रहिया। और एक बार फिर से थो लोग के, सब कोई के, सब परिवार लोग के गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। और अंतिम गीत हमनी चलाओ अब सब नवीन जी और उकर पत्नी चित्रा जी खातिर। पूजा को अनुमति दा हमार दिन से। सब कोई के नमस्ते, स्वस्थ रहिया, सुरक्षित रहिया।

0: एमपीसीच्या वतीने तुम्हा सगळ्यांना गणेश चतुर्थीच्या मंगलमय शुभेच्छा.
1: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास रहे. एमबीसी की पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ गणेश चतुर्थी. एमबीसी विशेस यू ऑल अ पायस गणेश चतुर्थी. गणपति बाप्पा मोरिया.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं।

0: रविवार 13 सितंबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कल एम्स्टर्डम में आयोजित मीडिया एंड ऑडियो विजुअल के बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस में मीडिया सिटी के विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी को आधिकारिक रूप दिया गया है। आज सुबह हसोगेज में एक भारी वाहन के टकराने के बाद लगभग 40 वर्ष के एक मोटरसाइकिल चालक की घटना स्थल पर मौत हो गई, जो सड़क हादसे का नया शिकार बन गया है। 1 सितंबर से ऑनलाइन खरीदारी से आने वाले सभी पार्सल 150 रुपए की प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने के बाद ही डिलीवर किए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाता है। इस उत्सव का मुख्य पल गणेश की प्रतिमा की स्थापना है, जिसे भक्त अपने घरों या फिर मंदिरों में स्थापित करते हैं। विदेश स्तर पर ब्रिक्स समिट का समापन हो गया। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और जरूरी मिनरल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना गलत है, इससे दुनिया की तरक्की पर पड़ता है ज्यादा असर। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि कल एम्स्टर्डम में आयोजित मीडिया और ऑडियो विजुअल के बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मॉरिशस में मीडिया सिटी के विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी को आधिकारिक रूप दिया गया है। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर अफ्रीका ने इस परियोजना के तकनीकी स्तंभ को विकसित करने के लिए OTL ग्रुप के साथ हाथ मिलाया है। इसका उद्देश्य है मॉरिशस को एक प्रमुख ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म और अफ्रीकी व अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के लिए एक प्रवेश द्वार बनाना। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
1: शनिवार 12 सितंबर को एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कन्वेंशन के दौरान ब्रॉडकास्टिंग सेंटर अफ्रीका मीडिया क्राफ्ट और RTL के साथ जुड़े ब्रॉडकास्टिंग सेंटर यूरोप ने मॉरिशस में एक मीडिया सिटी लॉन्च करने की अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया। पॉम्प्लीमिसेस में मूल ढांचे में ऑडियो विजुअल चैनल की कई कड़ियां मौजूद होंगी। प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजिंग सेवाएं। इलाके में मॉरिशस जिस जगह पर स्थित है, ये परियोजना के लिए केंद्रीय पहलू। मीडिया सिटी मॉरिशस के CEO नजीब गुइया ने कहा, मीडिया सिटी मॉरिशस एक कॉन्टिनेंटल हब है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे भी है। मीडिया इंडस्ट्री के अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटरों के लिए अफ्रीकी महाद्वीप की ओर जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एवं क्रिएटिव ऑपरेटरों ने बहुत पहले से ही अपने अफ्रीकी विभाग कायम कर दिए हैं। कई हबों में जैसे कि दुबई मीडिया सिटी है, मैनचेस्टर है, ब्रसेल्स और पेरिस में भी आज मीडिया सिटी मॉरिशस इन्हें उनका प्रॉक्सिमिटी हब प्रदान कर रहा है। ठोस रूप से देखा जाए तो हब में 3 स्टूडियोज होंगे। बड़े प्रोडक्शंस के लिए 1000 वर्ग मीटर, मैगजीन्स के लिए 5000 वर्ग मीटर और न्यूज तथा लाइट फॉर्मेट के लिए 250 वर्ग मीटर। इस मीडिया डाटा सेंटर की बदौलत अफ्रीकी ऑपरेटर अपने कंटेंट्स प्रोड्यूस कर सकेंगे, इन्हें स्टॉक कर सकेंगे और वितरित भी कर सकेंगे। सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी तथा गतिविधि बरकरार रखी जाएंगी। इस स्थल पर स्थायी रूप से कार्यरत एक सुपरविजन सेंटर होगा और साथ में पोस्ट प्रोडक्शन की क्षमता और मल्टीप्लेटफॉर्म प्रसारण भी। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर यूरोप के COO फ्रेडरिक फ्यवेज ने कहा, ये विचार कर रहे थे कि एक सोवरेन सेंटर हो अफ्रीका के लिए। मकसद है पूरे अफ्रीका इससे लाभ उठाए। यूरोप में ग्राहकों को

0: प्रस्तावित सेवाएं अफ्रीका के लिए भी प्रदान करें, अफ्रीकी दर्शकों, ग्राहकों एवं साझेदारों के लिए। प्रशिक्षण की एक अहम जगह होगी क्षमताओं का क्रमिक हस्तांतरण और दूसरे चरण में ऑडियो विजुअल पेशे के लिए समर्पित एक टेक्निकल स्कूल भी। इस परियोजना का उद्देश्य है मॉरिशस को एक टेक्नोलॉजिकल मंच की तरह और कॉन्टिनेंटल मंडी की ओर एक द्वार की तरह निर्धारित करते हुए एक उभरते हुए सेक्टर में अफ्रीका की क्षमताओं को बढ़ाना।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि आज सुबह सोगीज में एक भारी वाहन से टकराने के बाद लगभग 40 वर्ष के एक मोटरसाइकिल चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई, जो सड़क हादसे का नया शिकार बन गया है। खबरों के अनुसार मोटरसाइकिल चालक ने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, तभी वह ट्रक के पिछले पहिए से जा टकराया। हादसे के 5 मिनट के भीतर ही सैमी मौके पर पहुंच गई थी, परंतु उनकी जान नहीं बचा सकी। इस साल की शुरुआत से अब तक सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले यह 43वें मोटरसाइकिल चालक है और हमारी सड़कों पर कुल 109 लोगों की मौत हो चुकी है। काविन तापेसा की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
0: सुगैज में रेजवी की ओर आज सुबह 10:15 एक भारी भरकर लॉरी और एक मोटरसाइकिल एक दुर्घटना में संलग्न। दुर्घटना स्थल पर प्राप्त जानकारियों के मुताबिक मोटरसाइकिलिस्ट ने लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉरी के पीछे वाले पहिए के साथ टकरा गई। लॉरी चालक को पता ही नहीं चला कि दुर्घटना हुई है और 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जाकर वो रुका। सामी दुर्घटना के 5 मिनट बाद ही पहुंच गया स्थल पर, लेकिन सेकोंस्टांस सैफे के रहने वाले 40 वर्षीय मोटरसाइकिलिस्ट को सर पर गहरी चोटें लगी और अस्पताल जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के समय फाउस लेन पर मौजूद एक गवाह ने बताया कि उन्होंने क्या देखा। साल की शुरुआत से हमारी सड़कों पर 109 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 43 मोटरसाइकिलिस्ट हैं।
1: कई साल बीत जाने के बाद भी कुछ सड़क हादसों के पीड़ितों के परिवार आज तक जांच पूरी होने और जिम्मेदारियां तय किए जाने का इंतजार कर रही है। ये लंबा इंतजार उनके दर्द को और बढ़ाता है और न्याय पाने की उनकी कोशिशों में देरी कराता है। डीपीपी के कार्यालय के अनुसार कानून के शासन वाले एक देश में इस तरह की देरी सामान्य नहीं रही। 1 सितंबर से ऑनलाइन खरीदारी से आने वाले सभी पार्सल 150 रुपए की प्रोसेसिंग फी का भुगतान करने के बाद ही डिलीवर किए जा रही है। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के अनुसार इस नए उपाय को लागू करने के मुख्य कारण पार्सल की संख्या में भारी वृद्धि और उनके रखरखाव की बढ़ती लागत है। पिछले साल मॉरिशस के लोगों ने 17 लाख से अधिक पार्सल आयात किए थे। तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।
2: घंटों तक पार्सलों का आना जाना रहता है। रोज बड़ी तादाद में इन्हें कई देशों से लाया जाता है। पार्सल पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदार अफसर राधिका रामलाल बताती हैं, जब हवाई अड्डे से पार्सल यहां आते हैं तो हमें एक एक करके हर पार्सल को स्वीकार करना पड़ता है। हर एक की स्कैनिंग की जाती है। कस्टम अफसर रिलीज या डिटेन होने वाले पार्सलों का फैसला लेते हैं। हम सोर्टिंग करते हैं, फिर सभी इलाकों के डाक घरों की ओर इन्हें भेजते हैं। पोस्टमैन डिलीवरी करते हैं। ऑर्डर करने वाले व्यक्ति तक पहुंचने तक हर पार्सल को कई मरहलों से लाजमी तौर पर गुजरना पड़ता है। कई ऑपरेटर डिलीवरी करते हैं। मॉरिशस पोस्ट लिमिटेड सबसे ज्यादा पार्सलों का संचालन करने वाली कंपनियों में से एक है। हर महीना डाकघर 20,000 पार्सलों का ट्रांसफर करते हैं। CEO डॉक्टर जयराज ईटू बताते हैं, आज डाकघर को विदेश से कई प्रकार के पार्सल

0: करते हैं डिब्बों में और छोटे पैकेट्स में। स्मॉल पैकेट्स को पोस्टमैन द्वारा भेजा जाता है। कस्टम सेवाओं के मुताबिक सन 2023 में 4 लाख से ज्यादा पार्सल विदेश से मंगवाए गए थे। सन 2024 में ये आंकड़ा 9,20,000 के पार दर्ज हुआ और 2025 में 1.7 मिलियन से ज्यादा पार्सल मॉरीशस लाए गए थे। पहली सितंबर से टेमू, अली एक्सप्रेस, शीन और दीगर शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन खरीदारी की कीमत ज्यादा है।
1: गोये फिन एक्स्ट्रा ऑगमेंटे।
0: एमओआरए के सेक्शन हेड जगदीश सिंह नंदू बताते हैं, विदेश से मंगवाए जा रहे पार्सल बहुत बढ़ गए हैं। कुछ लोगों की बुरी नीयत है जो इन पार्सलों में गैरकानूनी चीजें लाते हैं जैसे ड्रग्स, इसीलिए 150 रुपए का प्रोसेसिंग फी लागू है। सामानों की कस्टम प्रक्रियाओं के लिए एमओआरए को अधिक संसाधनों की जरूरत है जैसे अफसर, मशीनें, स्निफर कुत्ते वगैरह।
1: ressources en termes de ressources humaines et aussi nous avons besoin de mettre plus d'équipements comme un scanner, chair renifleur.
0: 150 रुपए का नॉन रिफंडेबल फी हर पार्सल पर लागू है जो बिक्री के मकसद से मंगवाए नहीं गए हैं।
2: एक्रीज स्टॉफ बाराउनाउस्की के लिए उम्र सचमुच सिर्फ एक नंबर है। 88 साल की उम्र में इस महान पॉलिश नाविक ने एक अविश्वसनीय चुनौती शुरू की है। सन 1920 के दशक की क्लासिक डिजाइन वाली अपनी मेटोरिया पर सवार होकर अकेली अपनी तीसरी दुनिया की यात्रा पूरी करना। जी हां, पिछले साल के अंत में कैनेरी द्वीप समूह से रवाना होने के बाद उन्होंने हाल ही में कैनेरी द्वीप समूह लौटने से पहले हिंद महासागर को पार किया और मॉरिशस में पड़ाव डाला। ज्यादा विस्तार रजनी बिकर के साथ।
3: 88 वर्षीय क्रिसिस्टोफ बाराउनाउस्की घबराते नहीं है। पोलैंड के ये नेविगेटर इन दिनों अकेले दुनिया की अपनी तीसरी सैर पर हैं। 15 मीटर की ऊंचाई वाले मेटो पर सवार 1920 की ही तरह के यास्ट की तरह इसे बनाया गया है। उन्होंने अपनी सैर के 50% भाग से अधिक पूरा कर दिया है। 2025 के नवंबर महीने में वे स्पेन के पास कनारी टापुओं से समुद्र में निकले। अटलांटिक में पहली बार गुजरने के बाद से वे पनामा कैनाल से होते हुए प्रशांत महासागर में पहुंच गए। इसके बाद वे ताहिती में रुके, फिर फिजी टापुओं में। इसके उपरांत वे ऑस्ट्रेलियाई तटों तक पहुँच गए। वे कुछ सप्ताह तक डार्विन में भी रुके। हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और मास्कारेंस के बीच का फासला तय करना उनके सफर के सबसे अहम चरणों में से एक। लेकिन क्रिसिस्टोफ बाराउनाउस्की के लिए विशाल समुद्री स्थल के कोई राज ही नहीं। 1972 और 1999 की कामयाबी के बाद ये धरती की उनकी तीसरी सैर है। वे कहते हैं,
4: सोलो सेलिंग इज डिफिकल्ट बिकॉज़ You are not supposed to sleep too long.
3: अकेले समुद्र में नाव चलाना काफी मुश्किल है क्योंकि लंबे समय तक सो नहीं सकते हैं। अक्सर इस कोशिश में रहते हैं कि कब सोने के लिए थोड़ा समय मिले, आराम कर सके। जब परिस्थितियां कठिन हो तो जैसे तैसे ये करना ही चाहिए, हमेशा आसान नहीं है।
4: And always waiting for some sleep. So when I come on land, then I'm sleep long.
3: लकड़ी से बने अपने इस ढांचे की पूर्ण जांच के बाद और साथ में 3-4 सप्ताहों के ब्रेक के बाद वे अपने मेटियो पर सवार फिर से निकल पड़ेंगे। रुख दक्षिण अफ्रीका की ओर। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वे डरबन में रुक सकते हैं, जिसके बाद फिर से अटलांटिक की ओर प्रस्थान करेंगे, कनारी टापुओं की ओर। समझा जाता है कि नवम्बर महीने और दिसंबर महीने के बीच वे वहाँ पहुँचने वाले हैं।
2: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है जो भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाता है। इस उत्सव का मुख्य पल गणेश की मूर्ति की स्थापना है, जिसे भक्त अपने घरों या फिर मंदिरों में स्थापित करते हैं। ये क्रिया केवल धार्मिक नहीं अपितु इसका बहुत बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। अपने घर में मूर्ति स्थापित करके प्रत्येक भक्त भगवान गणेश के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। सेबास्टोपोल में भी भक्त मूर्ति स्थापना के लिए एकत्र हुए हैं इस वक्त, और जो भक्ति और

0: भावनाओं से सराबोर पल है। और इस वक्त हमारी सहयोगी याचना मिश्रा सेबास्टोपोल में है और वहां पर किस प्रकार का वातावरण है, आइए उनके साथ सुनते हैं। सबसे पहले नमस्ते याचना।
1: नमस्ते अभी और सभी श्रोताओं को भी नमस्ते। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, अभी हम सेबास्टोपोल गांव में हैं, जहां पर कई परिवार एक साथ एकत्र हुए हैं और कई नौजवान भी यहां पर आए हुए हैं। पड़ोसी सब लोग एक साथ मिलकर एक ही जगह पर 107 छोटी मूर्तियों और एक बड़ी मूर्ति, साथ में गौरी माँ की मूर्ति भी है, यहाँ पर इन सब की स्थापना की गई है। इससे पहले वे लोग वहाँ गए थे जहाँ पर उन्होंने मूर्ति बनवाया है। वहाँ से मूर्ति लेकर वो लोग सेबास्टोपोल आए, जहाँ पर उन्होंने जुलूस में भाग लिया। जुलूस में भी गणेश भगवान की जय जयकार की गई और साथ में उनके गुणगान के लिए झांकरी भी किया गया और सब लोग एकत्र होकर यहाँ पर अभिषेक करने आए। यहाँ पर मूर्ति स्थापना से पहले मूर्ति अभिषेक भी किया गया और सब लोग भव्य तरीके से कल गणपति जी के जन्मोत्सव का उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं। कल पूरी रात यहाँ पर भी ऐसी ही बप्पा की आरती उतारी जाएगी और फिर उसके बाद विसर्जन किया जाएगा।
0: इन सभी जानकारियों के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं याचना। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। केवल 14 साल की उम्र में वे मराठी समुदाय का एक खास चेहरा बन चुके हैं। मोफेचिल में मयूरेश बालू एक युवा नियुक्त पंडित के रूप में अपनी पहली प्रार्थनाएं संपन्न करा रहे हैं। ये लगन उनमें मात्र 3 साल की उम्र में ही पैदा हो गई थी, जिसे वह आज अपनी पढ़ाई और धार्मिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। 2 सदी पहले भारत से जहाज रवाना हुए थे, जो अपने साथ सपने, उम्मीदें और एक पूरी विरासत लेकर गए थे। शुक्रवार 11 सितंबर को दुनिया भर से आए उनके वंशज एक ही उद्देश्य के साथ मॉरिशस में एकत्र हुए। इंडियन डायस्पोरा के भीतर संबंधों को मजबूत करना, यही 16वें गोपियो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2026 का मुख्य उद्देश्य रहा, जिसमें मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा, म्यांमार, भारत और कई अन्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। रविवार 13 सितंबर यानी कि आज को समापन समारोह के दौरान धुंदेव बहादुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान एक पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया। और हिंद महासागर क्षेत्र ने हिंद महासागर आयोग और सिगाद के बीच रूपरेखा समझौते को 3 साल के लिए नवीनीकृत करके अपने सहयोग को और मजबूत किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर एबन में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुए और 10 साल से पहले से अधिक समय से लागू इस समझौते से पहले ही इस क्षेत्र में कृषि अनुसंधान को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस साझेदारी का उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में जलवायु, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि को सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनुसंधान को मजबूत करना। ज्यादा विस्तार पूजा के साथ।
2: हिंद महासागर आयोग और सिगाद के बीच इस समझौते का 3 वर्षों के लिए नवीनीकरण, क्षेत्रीय कूटनीति और वैज्ञानिक विशेषज्ञता के बीच साझेदारी को और मजबूत करता है। इस समझौते के केंद्र में फ्रेगाद ओई यानी हिंद महासागर में कृषि जोखिमों की रोकथाम और प्रक्रिया प्लेटफॉर्म है। ये एक सहयोगात्मक मंच है जो शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों को एक साथ लाता है, ताकि हिंद महासागर के टापुओं को प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी चुनौतियों का सही तरीके से सामना किया जा सके। ये हमारी उस प्राथमिकता के अनुरूप है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा को विकसित और मजबूत करना है। इसके साथ ही हमारा दृष्टिकोण इससे आगे बढ़कर हिंद महासागर आयोग की एक अन्य परियोजना की ओर भी है, जिसमें कृषि क्षेत्र में एक एकीकृत मंडी के निर्माण की परिकल्पना की गई।

0: दी है। इस साझेदारी ने पहले ही द्वीपीय क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान को व्यवस्थित करने और जैव सुरक्षा से जुड़ी कई पहलों को शुरू करने में योगदान दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर कृषि वेधशाला की स्थापना में भी इस साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कृषि क्षेत्र की कमजोरियों और जोखिमों का बेहतर चित्रण करना है। हमने सहयोग की ऐसी परियोजनाएं शुरू की है जिन्हें विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से व्यवस्थित किया गया। इन नेटवर्क का उद्देश्य महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना था। इनमें स्वास्थ्य और पशु स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे शामिल थे, जिन्हें व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा गया। इसके साथ ही हमारी स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा और पर्याप्त खाद्य आपूर्ति से जुड़े सवालों पर भी काम किया गया। और आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन की चुनौती भी आखरी हुई है, जिसका सामना करना अब बेहद जरूरी हो गया है। इस समझौते के माध्यम से मॉरिशस के अधिकारी भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे इलाके में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कृषि तकनीकों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारे टापू में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं मौजूद हैं। हमारे पास कई प्रयोगशालाएं हैं और प्रत्येक की अपनी विशेषता है। ये एक अच्छी पहल है कि हम अपने आसपास उपलब्ध विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठाएं। हमारा उद्देश्य मिलकर साझा समाधान तलाशना है। इन सभी पहलों का उद्देश्य स्पष्ट है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना और पूरे इलाके के लिए एक टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करना।
1: जुमे की रात इस्लामी शकाफती सेंटर पोटली में कौमी की रात मुकाबले का फाइनल लगा। 17 साल की उम्र वाले मोहम्मद हामिद हजा खान जुमन ने पहला इनाम जीता। मकद उल मुकरमा सोसाइटी ने एमबीसी के ताउन से इस मुकाबले का एहतमाम किया। मकसद नई नस्ल में कुरान की तिलावत को फरोग देना। कुरान इस्लाम की सबसे अजीम किताब है, जिससे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर नाजिल फरमाया गया था। तफसील के साथ सुमेहरा अकबर अली।

0: इस कौमी मुकाबले के फाइनल्स में 9 नौजवान थे। अरबी में किरात का मायने है कुरान की तिलावत करना। मुख्तलिफ इलाकों, मदरसों और इदारों से आए 13 से 17 साल की उम्र वाले इन नौजवानों को तजवीद यानी प्रोनाउंसिएशन, मकामात यानी तर्ज और आवाज के हवाले से आजमाया गया। MBC के तावुन से मक्कतुल मुकर्रमा सोसाइटी ने इस मुकाबले का इनेकाद किया। पोटवी की जुमा मस्जिद से मोहम्मद हमीद रजा जुमन अव्वल आया है।
1: Either

0: इस पहले इनाम के लिए उसे उमरा अदा करने का पैकेज और 1000 रियाद मिले।
1: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ब्रिक्स समिट का समापन हो गया है। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि टेक्नोलॉजी और जरूरी मिनरल्स को हथियार की तरह इस्तेमाल करना गलत है, इससे दुनिया की तरक्की पर असर पड़ता है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी, जलवायु परिवर्तन और सप्लाई चेन में रुकावटों ने दिखाया है कि दुनिया के देश एक दूसरे से जुड़े हैं। एक जगह आया संकट दूसरे देशों को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से आपसी सहयोग बढ़ाने और मजबूत सप्लाई चेन बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में भारत मंडपम में सदस्य देशों के नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। इस दौरान श्री नरेंद्र मोदी के दोनों ओर चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन नजर आए। कई यूरोपीय देशों में प्रवासियों का मुद्दा चर्चा केंद्र में है और कल इंग्लैंड में भारी मात्रा में हो रहे आप्रवासन के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। अवैध प्रवासियों

के आने के बाद से इस देश का तनाव लगातार बढ़ रहा है। उधर स्वीडन में जहां इस रविवार को एक बेहद कड़ा मुकाबला हुआ, दक्षिणपंथी ढड़े ने जीत मिलने पर आप्रवासन विरोधी पार्टी स्वीडिश डेमोक्रेट्स को मंत्री पद देने का वादा किया है।

और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, परंतु कल सुबह दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर बादलों के घेराव के साथ बारिश होती रहेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, खासकर दक्षिणी और पश्चिमी लगुनों के उस पार, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। अतिरिक्त जानकारी, कल रात से मैस्कारेंस की ओर से ठंडी हवाएं बहने लगेगी और एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के उभरने से ज्यादा ठंड महसूस की जाएगी। साथ ही साथ 3 डिग्री सेल्सियस के साथ तापमान में गिरावट नोट की जाएगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्यास्त 6:03 पर, जबकि कल सूर्योदय 6:07 पर।

तो देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

आयुषुक समाचार सुनते हैं। डिप्लेविस्ट रोड लॉन्ग माउंटेन में 88 साल के 88 years old के श्री गोविंद दत्त दुमन, जिन्हें सब लोग पंडित जयलाल के नाम से भी जानते थे और जो आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के पूर्व पंडित थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के ढाई बजे उनके बेटे श्री सुभाष दुमन के घर डिप्लेविस्ट रोड लॉन्ग माउंटेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियुले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। रारुद बुबासे में 78 साल की 78 years old के श्री प्रकाश देवी, जिन्हें सब लोग प्रकाश के नाम से भी जानते थे और जो नंबर 9 सर चार्ल्स लीज स्ट्रीट रोजेल के पूर्व निवासी थे और साथ ही साथ मगाजें देवी रोजेल के मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे ला शापेल ऑनडॉट एलियन सन्स रारुद बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 73 कोरियोलिस गली कैथोबोन में 84 साल के 84 years old के श्री अद्वैत रंगतुआ, जिन्हें सब लोग अद्वैत के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उन्हीं के घर नंबर 73 कोरियोलिस गली कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वा मामेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सोमवार 14 से 20 सितंबर को गणेश चतुर्थी के संदर्भ में ग्लेनपार्क वाक्वा के मराठी कल्चरल सर्कल भवानी मंदिर द्वारा प्रेम उत्सव चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में मेलरोज के श्री गजानन सरस्वती मंदिर मोका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मॉरिशस मराठी मंदाली फेडरेशन के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को 6 बजे गणेश मूर्ति स्थापना, रात के 8:30 बजे एक सांस्कृतिक प्रोग्राम और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 5 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में पाल्मा कैथोबोन के देवानंद और अविनाश गनक परिवार द्वारा मंगलवार 15 सितंबर से 20 सितंबर तक गौरी पूजा का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में बोबासा स्वस्तिका कमेटी द्वारा सोमवार 14 सितंबर को शाम 3:30 बजे कलश स्थापना और मंगलवार को 15 सितंबर को 11:30 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में सोमवार 14 सितंबर को रात्रि के 7:30 बजे गणेश पूजा और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 3:00 बजे सैमोत्या सुल्फेरिनो में विसर्जन का आयोजन कर रहा है। गणेश चतुर्थी के संदर्भ में कौराबो के सनातन और कौराबो काली माता मंदिर के सहयोग से सोमवार 14 सितंबर को शाम 4:00 बजे मूर्ति स्थापन और मंगलवार 15 सितंबर को शाम 4:00 बजे विसर्जन का आयोजन कर रहा है।

नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं आप कैसे हैं? दिन के सारे कार्य आपके पूरे हो चुके होंगे और चलिए अब थोड़ा सा हल्के होकर उस प्रभु के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि दिन भर की भाग दौड़ में इस दिमाग पर बहुत सारे काम होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी तो कागज़ पर सूची बनानी पड़ती है कि कोई कार्य हम भूल ना जाएं। लेकिन श्रोताओं, इस दिमाग की मस्तिष्क की शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रभु से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। भक्तों को देखिए, वे पूरी तरह से प्रभु से जुड़े होते हैं, पूरा संसार उनका विरोधी होता है, कितना उनको तंग करते हैं। मीराबाई का उदाहरण देख लीजिए, जहर का प्याला, सांप की पिटारी, राजमहल से निष्कासन, न जाने कितने दुख दिए। लेकिन उसके बावजूद भी इन भक्तों का मस्तिष्क बिल्कुल स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि वे किसी तरह के डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, वे तो केवल अपने प्रभु से जुड़े रहते हैं। तो जब व्यक्ति प्रभु से जुड़ जाता है और उसके नाम का स्मरण करता है तो मन और मस्तिष्क को विशेष शक्ति मिलती है। तो चलते हैं, मीराबाई का एक भजन सुनते हैं।

श्रोताओं, इसीलिए उस प्रभु की उपासना अर्थात उसके नज़दीक बैठकर उसके गुणों का स्तवन करना, स्तुति करना, नाम जप करना, उसे याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना जितना हम उसके याद करते हैं उतना उतना हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं और संसार की वे सब बातें जो ईर्ष्या, द्वेष, वैर इत्यादि पैदा करती हैं उन्हें हम भूलने लगते हैं। हमारा स्वभाव क्षमा वाला होने लगता है और हम अपने शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं, अर्थात हृदय और उदार हो जाता है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, जीवन के दो पक्ष हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक जीवन में हम साधनों की भरमार को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है तो हम भौतिक जीवन के साधनों को कम से कम करते जाते हैं। इसीलिए किसी महान व्यक्ति ने कहा, साधन होते हुए भी जिसकी आवश्यकताएं कम से कम है वही उतना महान है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का उदाहरण देख लीजिए। तो श्रोताओं, जितना हम अपने लक्ष्य की ओर समर्पित होते हैं ना, उतना ही भौतिकता से ऊपर उठने लगते हैं। यही प्रभु को भजने की सबसे बड़ी शक्ति हमें मिलती है।

श्रोताओं, भौतिक साधन इसलिए जुटाने हैं कि संसार में हमको रहना है, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, वाहन चाहिए, साधन चाहिए, बस इतना तो ज़रूरी है। लेकिन विलासिता की ओर बढ़ना और विलासिता में जीवन की खुशियों को ढूंढना, तब हम प्रभु से दूर होने लगते हैं। और अंत में श्रोताओं, यह मन उस प्रभु के साथ जुड़ा रहे, उसको याद करे, उसका नाम जप करे, यह बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस चित्त को शांत नहीं कर पाएंगे। और जब तक चित्त शांत नहीं होगा, तब तक बुद्धि और विवेक हमारा सद्मार्ग पर नहीं चल सकते। इसीलिए कुछ समय पूरे दिन में उस प्रभु के साथ जुड़ना, उसे याद करना, यह भक्ति की पहली यात्रा या पहला पड़ाव है। तो चलिए श्रोताओं, इस भजन के साथ अलका धनपत और शिव, हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है और झूठ गुनाह की तरफ रहनुमाई करता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाती है।

सलाम का नजराना पेश करते हैं। इसी के साथ महफिल शब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगली मुलाकात तक समीर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:15 बज गल बा। नमस्कार श्रोता लोग, आज तो आप सब लोगों का स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। अच्छाला साथ देने खातिर बहुत धन्यवाद। उषा तोहर संगे अभी ले रात के 11 बजे ले नंबर वा घुमावा 402-4-4-5 और अपन गाना की मांग बेझिझक से करिया। तचला सुना नोयन के गावल गीत सुना जा।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:30 बज गए बात अच्छा वाकवा की ओर से अमृता जी जो हमनी के सुनत आई बखत और गाना मांगत वंजा अपन खातिर अपन पति देव खातिर और बेटा कुशल खातिर नीरज गुप्त मधु के गावल गीत आधा रात।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:40 हो गल बा ललिता जी खातिर जो हमने के सुनता थ्रियोले से गाना मांगा तवंजा विश्वानी दीपवा के गावल गीत और गाना खासकर बहन सुदेवी ज्ञानी मीता छोटी दीदी दीदी प्रभावती आत्माराम भैया और सुखलाल मौसी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:03 हो गल बा और चला अगला गीत जलसा लाल बा किशोर की मियाँ के गावल गीत। ये गाना अमृता जी खातिर जोन रहिला पीतू और ये बखतम नी के सुनाता। गाना अपन खातिर विशान, मीनाक्षी, पूनम, सोनिया और परी खातिर और खासकर सभी गणेश परिवार खातिर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी
0: तड़का
1: तड़का
2: रात के 10:15 बज गल बा और चला अगला गीत मानती खातिर जन रहिला में बग और बखत हमने के सुनाता और गाना सुना नुयन के गावल गीत एक बार फिर से गानायकर खातिर और पूरे रघुनाथ परिवार खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का।
2: रात के 10:37 चला सुदेवी जी खातिर जो हमने के सुना था वाह क्वा से गाना मांगा था वंजा थियोले के दीदी ललिता खातिर और पूरे कुशल परिवार खातिर दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के स्नेहा कीर्ति और राम रतन परिवार खातिर।

के 10:52 भाई बहन लोगन बहुत धन्यवाद बा कि इतने बखत हो गए फिर भी आप लोगन साथ देवा तवन जा हमेशा सहयोग देते रहिया सबके योगदान से ही एकता से ही मानवता की प्रगति होवेला शुभ रात्रि नमस्कार

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

ये समा तो हमें प्यार का समा लग रहा है, ये समा तो हमें इंतज़ार का समा लग रहा है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ वेदिता और आप सबों का सुनहरे पल कार्यक्रम में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे खूबसूरत गीतों का मज़ा लेने के लिए तैयार भी हैं।

सुनहरे पल के सभी हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं का मैं विनीता स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, प्यार जो होता है ना, कभी कभी ये एक तरफा होता है। जी बिल्कुल, कभी कभी हम दिल की बात कह नहीं पाते हैं और उस प्यार को बीते कितने साल बीत जाते हैं, बिल्कुल इन पुरानी गीतों की तरह। आज भी जब ये गाने चलते हैं तो हमें वो पल याद आता है, लेकिन दिल में एक सवाल होता है कि काश हमने दिल की बात कह दी होती तो आज शायद जिंदगी अलग होती। खैर, चलिए यहाँ पर अफसोस नहीं करना, यहाँ पर साथ देना और गुनगुनाते रहिए हमारे खूबसूरत पुराने गाने।

सुनहरे पल के जितने भी हमारे प्यारे श्रोता हैं, आप सबों का स्वागत करती हूँ मैं वेदिता। बताइए कैसे हैं आप सब? बढ़िया, सब ठीक। पुराने गाने पसंद है ना आपको, जानती हूँ, इसीलिए तो लेकर आए हैं आपके लिए गाने। वैसे इन गीतों के साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी ना, मैं जानती हूँ। यादें ही तो बनके रह गई हैं पुराने गाने, तो चलिए इन यादों को फिर से महकाते हैं और गीतों को फिर से गुनगुनाते हैं।

लिखने वाले तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं भाई, कुछ तारीफ़ करते हैं, कुछ दिल की गहराइयों तक पहुंच जाते हैं। वैसे किसी के दिल के अंदर अगर देखें ना तो पता नहीं चलता कि किसके दिल में क्या चल रहा है। हमें पता है आपके दिल में क्या चल रहा है, इसीलिए तो हम लेकर आते हैं आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सुनहरे पल, जहाँ पर खूबसूरत गाने आप इंजॉय करते हैं।

मैंने कहा ओ जी गाना याद आया, यही पूछ रही थी ना आप अपने ओ जी से। ये शादी के बाद एजी ओजी बन जाते हैं जी। तो मैं वेदिता आपका स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ उस गाने के साथ आप लोगों का पुराना रोमांस भी जाग गया होगा, कुछ याद आया, कभी आपने इनके लिए गाना गाया होगा, कभी इन्होंने आपको जवाब दिया होगा, जवाब में कहा दिया होगा, ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ इन पुराने गीतों का असर आप पे ज़रूर होता है।

तो दोस्तों पुराने गीतों का यही सफ़र हमें यही याद दिलाता है कि जो बीत जाता है वो यादें बन जाती हैं और जो पल हमारे साथ हैं अगर इसको हम अच्छे से जिए तो ये खूबसूरत यादें बन जाती हैं। इसीलिए टेंशन न लेने का न देने का, ज़िंदगी मिली है छोटी सी, इसको जीना है, प्यार से जीना है और बाकी और कुछ नहीं करना। आप गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए, ये है आपका सुनहरे पल।

तो दोस्तों सुनहरे पल प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त होता है। ओ माय गॉड इतनी जल्दी, हाँ हाँ जाने का टाइम हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपने हमारे आज का सिलेक्शन पसंद किया है ना। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम बहुत जल्द ऐसे ही खूबसूरत प्रोग्राम के साथ। फिलहाल के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते।